0: अनमोल विचार।
1: शुक्रगुजारी केवल बड़ी खुशियों के लिए धन्यवाद देना नहीं, बल्कि जीवन में मिली छोटी छोटी नेमतों को भी पहचानना है। हमारे पास जो है उसके लिए आभारी होना हमें संतोष और सुकून देता है। कभी कभी हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन अनमोल चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास है। शुक्रगुजारी वो नजर है जो कमी में भी नेमत और कठिनाई में भी सीख खोज लेती है। आइए आज हम शिकायतों की जगह शुक्रगुजारी को चुने और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशियों के लिए दिल से कहें शुक्रिया।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अनमोल विचार। अब आरंभ होता है कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो सबसे पहले सुनिए समवेत स्वरों में मातृ वंदना।

0: श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही आज का हमारा प्रभाती वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए एग्री टिप्स।
1: भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें केले के रोग व उनकी रोकथाम के संदर्भ में। केला फलों में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। हमारे देश में करीब 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर केले की खेती होती है। केले में खनिज पदार्थ, विटामिन एवं शर्करा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरी फसलों की ही तरह केले में भी अनेक प्रकार के रोगों एवं कीटों का प्रकोप होता है, जिनसे कि इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। केले के बागान में अगर आपने फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो इससे आपको वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा और कृषि की सारी आर्थिकी बिगड़ जाएगी। केले में अनेक प्रकार की बीमारियाँ लगती हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख बीमारी है बंचीटॉप। बंचीटॉप बीमारी एक विषाणु द्वारा होती है और इसके लक्षण जैसा कि नाम से विदित है इस प्रकार से प्रकट होते हैं कि जो पौधे की ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होकर खड़ी हो जाती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि पत्तियों का एक गुच्छा बन गया हो। इस तरह के पौधों को देखते ही तुरंत उखाड़ कर नष्ट कर दें या जला दें, क्योंकि जो विषाणु से रोग फैलते हैं इनके नियंत्रण के लिए आप सीधे कुछ नहीं कर सकते, बल्कि विषाणुओं को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। केले में पत्तियों पर धब्बों का बनना एक दूसरी बड़ी समस्या है। पत्तियों पर धब्बे बनने से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है और इस प्रकार उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ पौधे की पत्तियों पर ही दिखाई देती है। इसमें पहले पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं और बाद में पीली धारियों में ये बदल जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य बीमारी है सूडो स्टेम रॉट। इसमें होता यह है कि पौधा जो होता है वो कॉलर भाग से सड़कर गिर जाता है। सिगार किनारा गलन रोग भी केले के पौधों में लगने वाला एक रोग है। इसमें जो केले के छिलके होते हैं वो मटमैले हो जाते हैं और जलते हुए सिगरेट की तरह दिखने लगते हैं। किसान भाइयों, इन सब बीमारियों से निजात पाने के लिए आप केले के कंदों को स्वस्थ बागान से हिलाएं और इनको रोपने से पहले इनका उपचार जरूर कर लें। जहां तक पत्तियों का सवाल है तो पत्तियों पर जो धब्बे लगते हैं या धब्बों वाला जो रोग लगता है इसके लिए आप फफूंद नाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंकोजब इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ देखा गया है। मैंकोजब का छिड़काव 3 से 4 दिनों के अंतर पर करना चाहिए और इसका 0.3% का घोल बनाना चाहिए। विषाणुओं से प्रभावित पौधों को जलाकर नष्ट कर दें या फिर ऐसे पौधों पर एग्रोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर के केले के बागान के लिए 600 से 700 लीटर दवा के घोल की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, केले के बागान में आप हमेशा स्वच्छता बरतें। केले के पुराने पत्तों को बागान से हटाते रहें और इसी प्रकार से पुराने जो तने हैं अथवा कंद वगैरह यहाँ वहाँ जो पड़े रहते हैं उनको भी समय समय पर बागान से हटाते रहें। अगर आप साफ सुथरी खेती करेंगे तो इससे भी बहुत सारी बीमारियों से बचने में आपको सहायता मिलेगी।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉ. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात

स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी, आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और इसकी वापसी यात्रा कल रविवार 27 तारीख को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और इसकी वापसी यात्रा कल रविवार 27 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। जलियान नालंदा निनकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और इसकी वापसी यात्रा मंगलवार 29 तारीख को सवेरे 8 बजे कैमल बे से छूटकर निनकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी कमोटा के स्थान पर अब एमवी वंडूर स्वराजद्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल सुबह 5:30 पर स्वराजद्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजद्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका के स्थान पर अब एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा के स्थान पर अब एमवी वंडूर शहीद द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल रविवार 27 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और 28 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। श्रोताओं अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं आप सुनिए।

0: कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

0: इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सीमा। श्रोताओं, आज इंद्रधनुष कार्यक्रम हम सजाएंगे प्यार से। प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं। यह केवल किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी और उसके दुख में अपना दुख महसूस करने का नाम है। सच्चा प्यार बिना किसी स्वार्थ के दिल से जुड़ता है और रिश्तों को विश्वास, सम्मान और अपनापन देता है।
1: प्यार, प्यार।

दोस्तों, प्यार की खूबसूरती इस बात में है कि यह इंसान को भीतर से बेहतर बनाता है। जहाँ प्यार होता है, वहाँ छोटी छोटी गलतियों के लिए

काफी कठिन समय में साथ और बिना कहे भावनाओं को समझने की कोशिश होती है। प्यार केवल मीठे शब्दों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों में दिखाई देता है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।

कहा जाता है प्यार वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वह है जो खामोशी में भी निभाया जाए। सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर परखे जाते हैं। परिस्थितियां बदल सकती है, दूरियां आ सकती है, लेकिन जहां विश्वास और सम्मान कायम रहता है, वहां प्यार अपनी रोशनी बनाए रखता है।

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार जीवन को खूबसूरत बनाने वाली वह रोशनी है जो अंधेरे समय में भी उम्मीद देती है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों को पाने से ज्यादा जरूरी उन्हें समझना, संभालना और निभाना है। इसलिए प्यार को केवल महसूस ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यवहार, शब्दों और कर्मों के माध्यम से उसे हर दिन व्यक्त भी करना चाहिए। इसी के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस कान की 373वीं कड़ी। गायक कलाकार है ए हरिहरन और अनुराधा पौड़वाल।

भगवान शिव ने जगत जननी पार्वती को इस प्रकार वो कथा सुनाई जो काक भुशुंडी ने गरुड़ का मोह भंग करने के लिए सुनाई थी। प्रभु के चरित्र की संख्या अपरिमित है, अपार, जिनका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती। भवानी कृतकृत्य हुई, उनके मन का संशय मिट गया, श्री राम के प्रताप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 373वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और अनुराधा पौडवाल व संगीत संयोजन थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए वतन के गीत के तहत देश गान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत के तहत देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी।

सवेरे 7:30 पर सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। विशेषज्ञ होंगी जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डी। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी राधा सलूचा और कमलिनी मल्होत्रा। कुछ फिल्मी गीत सुनिए सवेरे 9 बजे और 9:45 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सवेरे 9:10 पर। श्रोताओं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सवेरे 10 बजे कशिश, दिन के 11 बजे गीत गुंजन, 11:30 पर गीत अतीत, दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम जिसके तहत कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। श्रोता मलयालम कार्यक्रम सुनिए 12:30 पर जिसके तहत कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। 1:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 13वीं कड़ी आप सुनेंगे। 1:20 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी स्थानीय सभा समाप्त होगी लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसके तहत 2:30 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर होगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ जिसके तहत सूचनाओं के अलावा लोकप्रिय गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर प्रसारित की जाएगी प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 19वीं कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा शाम 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम शाम 4:45 पर। तमिल कार्यक्रम शाम 5 बजे। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 पर जिसके तहत चंद फिल्मी गीत आप सुनेंगे। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6 बजे जिसके तहत सिप्पीघाट निवासी श्री शिवराम से बातचीत का विषय रहेगा दुग्ध उत्पाद फायदे का व्यवसाय। 6:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम जिसके तहत नेल्सन पॉल टोपो की वार्ता आप होगी तथा एंकर इन द स्टॉर्म वाई वी नीड हॉबीज। शाम 6:45 पर सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं बताया जाएगा 7:15 पर। युवानी कार्यक्रम 7:30 पर जिसके तहत कार्यक्रम होगा बातें मुलाकातें। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोता अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का

0: वार्ताः
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और 100.9 मेगाहर्ट्स एफएम पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए जन सूचनाएं।

इसके अंतर्गत मौसम की जानकारी। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 93% तथा न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.7 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय सुबह 5:08 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:13। जन सूचनाएं के तहत ये थी मौसम की जानकारी।

श्रोताओं, आप सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। उड़ान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्रीविजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। ये थी उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, आपको बता दें, आज सवेरे 7:30 पर होगा हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। विशेषज्ञ होंगी जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डी।

0: सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे राधा सलूजा और कमलिनी मल्होत्रा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद। जी
1: आयुर्वेद में त्रय उपस्थम अर्थात जीवन के तीन प्रमुख अंगों का वर्णन किया गया है, आहार यानी भोजन, शयन अथवा निद्रा और अब ब्रह्मचर्य। इन तीनों का संतुलन शरीर को स्थिर एवं दृढ़ बनाए रखता है। आयुर्वेद अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को द्वीपों में मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
3: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
4: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
5: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत
6: 102 या 112
5: नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
7: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते।
8: नेशनल हेल्थ मिशन

0: अंडमान तथा निकोबार के द्वारा जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

द्वीपों के उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा आज और कल शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से द्वीप समूह के लिए अतिरिक्त LPG सिलेंडर आपूर्ति का अनुरोध किया है। हाफ मैराथन के चलते कल सुबह 4 बजे से नेताजी स्टेडियम से कार्बाइंस्कोव तट का मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा और विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में कार्बाइंस्कोव समुद्र तट पर बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज भी जारी रहेगी।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा आज और कल शहीद द्वीप के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे स्वच्छता ही सेवा अभियान और विश्व पर्यटन दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दौरे के दौरान उपराज्यपाल शहीद द्वीप के दो प्रमुख पर्यटक स्थलों भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर सनसेट बीच पर स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर का निरीक्षण और कचरा पृथक्करण व निपटान की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। वे पुलिस थाना पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जट्टी का दौरा कर वहां स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके बाद वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन सुविधाओं का जायजा लेंगे। उपराज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ स्वच्छता, पर्यटन, स्वच्छता प्रबंधन तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रमुख पर्यटक स्थलों पर चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रविन्द्र सिंह यादव, आयुक्त सह सचिव डॉ. सचिन शिंदे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात कर द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के संबंध में चर्चा की। उन्होंने नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री के.आर. नायडू से भी शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उड्डयन मंत्री ने द्वीप समूह के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने, हवाई किराए को अधिक किफ़ायती बनाने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और अंतरद्वीपीय सीप्लेन सेवाएं शुरू करने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उपराज्यपाल ने नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. सुब्रमण्यम के साथ प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समग्र विकास पर चर्चा की। इस दौरान जारी परियोजनाओं के लिए एक वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर द्वीप समूह में एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान जहाजरानी सेवाएं बाधित हो जाती हैं। इस अवधि के दौरान दूरदराज के द्वीपों को एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से द्वीप समूह के लिए विशेष एक मुश्त बफर स्टॉक कोटे के रूप में 8,000 अतिरिक्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 2,000 अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सड़क बंद और बीच वॉलीबॉल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब,

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार कमान की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हाफ मैराथन के सुचारू संचालन के लिए कल सुबह 4 बजे से 10 बजे तक नेताजी स्टेडियम से कार्बाइंस को समुद्र तक के मार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा। आम जनता से इस अवधि के दौरान यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के ने संबद्ध विभागों के सहयोग से कल कार्बाइंस को बीच पर ओपन पुरुष और महिला वर्ग के लिए बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। कल पुरुष और महिला वर्गों में कुल मिलाकर 4 मैच खेले गए। इस टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता आज भी सुबह 9 बजे से जारी रहेगी। इस बीच पुरुषों और महिलाओं के लिए रस्साकसी प्रतियोगिता आज दोपहर

वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा। आम जनता से इस अवधि के दौरान यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के ने संबद्ध विभागों के सहयोग से कल कार्बाइंस को बीच पर ओपन पुरुष और महिला वर्ग के लिए बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। कल पुरुष और महिला वर्गों में कुल मिलाकर 4 मैच खेले गए। इस टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता आज भी सुबह 9 बजे से जारी रहेगी। इस बीच पुरुषों और महिलाओं के लिए रस्साकसी प्रतियोगिता आज दोपहर बाद 3 बजे से आयोजित की जाएगी। 72वें वन्यजीव सप्ताह के तहत हाल ही में वेम्बरलीगंज मिनी स्टेडियम में कनेक्टिंग हैबिटेट्स थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ विषय के साथ वाइल्ड लाइफ वीक कप नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मैच स्टीवर्टगंज टीम और किंग मेकर्स टीम के बीच खेला गया, जिसमें किंग मेकर्स टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव डॉ एस दिनेश कन्नन ने किया। इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, वन विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि दक्षिण अंडमान वन विभाग ने वन्य जीवों और प्राकृतिक विरासत की रक्षा के उद्देश्य से इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। टूर्नामेंट में कुल 22 टीमें भाग ले रही हैं। पर्यटन निदेशालय ने पर्यटन पहल 2026-27 के तहत पाक कला कौशल प्रस्तुति और स्वच्छता में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए इच्छुक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन इमेजिंग, कैमरा हैंडलिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में भी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इच्छुक युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। निर्धारित प्रारूप या गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र पर्यटन निदेशालय के योजना अनुभाग में 30 सितंबर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय श्री विजयपुरम ने उपलब्ध रिकॉर्ड के सत्यापन और संबंधित नौकाओं की वर्तमान भौतिक स्थिति के मूल्यांकन के बाद गैर मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं और खेल नौकाओं सहित यंत्रीकृत मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के पंजीकरण को रद्द करने हेतु प्रस्तावित सूची तैयार की है। पंजीकरण रद्द करने के लिए प्रस्तावित नौकाओं की सूची प्रशासन मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट तथा क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय, मत्स्य उपकेंद्रों और मत्स्य अवतरण केंद्रों के सूचना पट पर दर्शा दी गई है। दावे और आपत्तियां प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कल पूरे द्वीप समूह में विभिन्न स्वच्छता जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें 680 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन गतिविधियों में 4 स्तरीय कचरा पृथककरण के प्रति जागरूकता, जन भागीदारी स्वच्छता अभियान, स्वच्छ पाठशाला गतिविधियाँ, पोस्टर व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ, सफाई मित्र स्वास्थ्य जाँच शिविर तथा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को न कहने के अभियान शामिल थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा आज और कल शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से द्वीप समूह के लिए अतिरिक्त LPG सिलेंडर आपूर्ति का अनुरोध किया है। हाफ मैराथन के चलते कल सुबह 4 बजे से नेताजी स्टेडियम से कार्बाइंस को तक का मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा और विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में कार्बाइंस को समुद्र पर बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज भी जारी रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: देश रागिनी दोस्तों, देश प्रेम आपसी भाईचारे और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। नफरत, लालच और कड़वी बातों को छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि आपसी प्रेम और एकता से ही हमारा देश मजबूत और खुशहाल बनता है।
1: नफरत

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी।

दोस्तों, यह गीत हमारी मिट्टी, खेती और देश की समृद्धि के प्रति प्यार और गर्व की भावना जगाता है। खूबसूरत खेत, मेहनत करते किसान और खुशियों से भरी धरती हमारे देश की सुंदरता और समृद्धि को दर्शाती है।

दोस्तों, आत्मनिर्भरता, मेहनत और देश की एकता से गांव-गांव में खुशहाली आए और हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। मिलजुल कर किए गए प्रयासों से देश को मजबूत और समृद्ध बनाने की सुंदर भावना इस गीत में है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 7 बजे

0: 31 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर।
2: हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार श्रोताओं, लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, परिवार नियोजन सिर्फ बच्चों की संख्या तय करने की बात नहीं है, बल्कि यह माँ के स्वास्थ्य, बच्चों के बीच उचित अंतर और पूरे परिवार के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कई बार परिवार नियोजन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और गलत फहमियाँ होती है। कौन सा तरीका सुरक्षित है, बच्चों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, गर्भ निरोधक तरीकों के क्या फायदे और संभावित दुष्प्रभाव है, और सही सलाह कहां से मिले, इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीना रेड्डी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, विषय से संबंधित सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर हमारा नंबर है 232540, हमारा स्टडी कोड है 03192। और श्रोताओं, आज का हमारा विषय है परिवार नियोजन सिर्फ बच्चों की। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपको ये जानना चाहेंगे कि परिवार नियोजन क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: परिवार नियोजन यानी हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग बोलते हैं हॉस्पिटल में सब लोग, ये एक एक्चुअली फैमिली डिसाइड करना है, मेनली पति पत्नी दोनों के बीच का निर्णय है। और हम लोग इंडिया में क्या है, सब परिवार साथ रहते हैं, ससुराल के साथ रहते हैं, सास के साथ साथ रहते हैं, सो वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर मैंने पेशेंट्स को देखा है, वो बोलते हैं मैडम जी मेरा हस्बैंड ने परमिशन नहीं दिया है, सास ने परमिशन नहीं दिया। हम बोलते हैं कि फैमिली प्लानिंग, इसलिए हम रखा है नाम ही फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन। फैमिली का साथ डिसीजन लेना होता है, मेनली हस्बैंड एंड दोनों बैठना होता है, उनको कितना बच्चा चाहिए, उन लोगों का हेल्थ कंडीशन क्या है, कोई बीमारी है, वो बीमारी के वजह से वो कितना बच्चा लेना चाहिए, वो सब अपने खुद डिसाइड करे, फिर जाके आसपास का गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी नियर बाई PHC हो, CHC हेल्थ सेंटर जो भी है, उधर पे ट्रेंड है हम लोग ANM को, मिडवाइफ को, सबको ट्रेन करके रखे हैं। आप कोई भी मेथड चाहिए आप उधर पे जाके पूछ सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंटरनेट में सारा आपका जो भी मेथड्स, प्लानिंग मेथड्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, वो सब आपको इंटरनेट में भी मिलेगा।
0: जी, तो श्रोताओं, आज आपको बता दें आज का हमारा विषय है परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। और हमारे साथ मौजूद है जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डी। तो डॉक्टर साहिबा, एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है?
1: पहले हम जो भी बोलते हैं स्वस्थ फैमिली के लिए, फर्स्ट थिंग इज हेल्थ। हेल्थ माने उनका कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए, सब लोग हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और वो फैमिली को एक जुड़ के रखता है, कौन है कि वो माँ है, वो जो बच्चा को जो भी जन्म देती है उसका हेल्थ हम सबसे प्रायोरिटी देना होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, माँ को थोड़ा दूर रखते हैं, मीन्स वो मेडिसिन लेगी, वो कर लेगी, ऐसा करके थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ा उसको
0: आजकल का साथ देना जरूरी होता है,
1: परिवार का साथ देना होता है। और हम और जितना भी हम पेशेंट्स इधर पे देखते हैं, सबको लगता है प्रेगनेंसी, एक बच्चा पैदा करना, ये सब नॉर्मल चीज है। लेकिन आजकल क्या है कि हाई रिस्क बढ़ता जा रहा है, मीन्स BP शुगर ये सब बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं पहले माँ का, जो भी बच्चा आपका लड़कियाँ है आपका घर का, उसका हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड आता है उनका मेंटल स्टेटस कि उसका रेडी है कि नहीं, शादी कर लेते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। अगर वो रेडी है कि नहीं भी, वो हस्बैंड और वाइफ का बीच में मामला है, वो रेडी है कि नहीं पूछना है। नेक्स्ट इज मेंटल स्टेट, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मीन्स आपका पैसा, आपका फैमिली का पैसा कितना है, फैमिली इनकम कितना है, आपका इनकम से आप कितना बच्चा का

0: भविष्य दे पाएंगे, वो सब आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद ही आप डिसाइड करना है कि कितना बच्चा चाहिए,
1: जी
0: और अच्छा ओनली बच्चा पैदा करना है, उसका अच्छा भविष्य भी देना होता है ना।
1: जी माँ का, माँ अगर स्वस्थ होगा तो बच्चा भी स्वस्थ ही इस दुनिया में
0: राइट
1: आएगा। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर है, ले लेते हैं। हेलो फरमा। हेलो डॉक्टर।
2: हेलो डॉक्टर, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से जनरल फिजिशियन हूँ।
1: डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब, बैठिए।
2: परिवार नियोजन ऑपरेशन ही जरिया है कि कोई टिकिया पिया खिलाया जाए, कितने दिन पर उसका प्रभाव होता है?
1: सवाल दोबारा पूछिए।
2: परिवार नियोजन कराने के लिए ऑपरेशन कराया जाए कि कोई टिकिया खिलाया जाए, गोली वगैरह?
0: गोली
1: हाँ, परिवार नियोजन के लिए किस तरह की गोली खिलाना चाहिए बोल रहे
0: अगर
1: हैं।
0: मिनी लैप मतलब हम लोग जो 3 सेंटीमीटर का इंसिजन करके वो ओपन करके काटते हैं, उसको तो 7 दिन का हम दवाई देते हैं, वो भी गोलियां ही देते हैं। पहले ऑपरेशन के दिन ही इंजेक्शन लगता है, उसके बाद जो 6 दिन है वो ओनली गोलियां देते हैं, तो ना
1: जी
0: कि इन्फेक्शन ना हो। अगर आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आया है लैप्रोस्कोपी,
1: जी
0: उसके लिए तो 1-3 दिन बस है, आपको स्कार भी नहीं, मीन्स कोई निशान भी नहीं रहेगा, पेन भी नहीं रहेगा, उसी सुबह आके एडमिट हो जाएगा। लैप्रोस्कोपी से हम ट्यूब्स को लाइगेट कर देंगे,
1: जी
0: एक फैलोप्रिंग करके एक नाम है उसका, रिंग जैसा रहता है, उसको ट्यूब्स में डाल देंगे, शाम तक वो डिस्चार्ज कर जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, आपको इस आपके जो सवाल है उसके जवाब मिल चुका होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, परिवार बढ़ाने का निर्णय लेते समय दंपति को किन महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए?
0: परिवार वो फैमिली प्लानिंग डिसीजन है कि आपको पहले कितना बच्चा है, पर डिपेंड क्या बोलते हैं उसका क्या क्या, पहले आपको गैप चाहिए होता तो उसके लिए अलग मेथड्स है।
1: जी
0: ऑलरेडी बच्चा आपको बस है, 2 बच्चा हो गया आपको बस है, तो उसके लिए अलग मेथड्स है। सो आप डिसाइड करना है कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को डिसाइड करना है कि गैप कनेक्टने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। डिसाइड आने के बाद आप नियर बाय आ जाइए। अगर मान लो आपको और बच्चा और नहीं चाहिए, परमानेंट मेथड जो बोलते हैं
1: जी
0: ना, जो ट्यूब्स को कटबंदी बोलते हैं, ट्यूब्स को जो फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं हम लोग, बच्चेदानी का उस अगल में रहता है ट्यूब, उसको हम काट के निकाल देते हैं, वो परमानेंट प्रोसीजर होता है। सो आप मेंटली प्रिपेयर होकर आना होता है उसके लिए। इस हस्बैंड और वाइफ को दोनों बैठना है, और क्योंकि वो परमानेंट मीन्स आप एक बार वो ऑपरेशन करने के बाद फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी, बच्चेदानी आए, बच्चा और नहीं होएगा, वेरी रेयर होएगा। सो एक बार वो करा दिया, किसी लोगों को ऐसा दिमाग में रखता है कि और हमको फ्यूचर में कुछ नहीं होएगा, सो
1: जी
0: इससे अच्छा है कि दोनों आपस में बैठने और डिसीजन अच्छे से ले,
1: जी
0: ताकि बाद में आधा आधा बात करके फिर बाद में कुछ लोग ऐसा रहता है कि मैडम हम गलती किया लगता है, ऐसा ऐसा लोग भी हम सुना है, मैडम अभी करा दिया, मेरा ससुराल लोग ऐसा बोलते नहीं कराना चाहिए था, मैंने कर दिया, अभी हम मुझे ताना दे रहा है। सो इससे अच्छा है पहले बैठ के उन लोगों का फैमिली को कितना चाहिए,
1: पति पत्नी
0: पति
1: और
0: फर्स्ट पति पत्नी दिस फैमिली को भी इन्वॉल्व करें,
1: सभी की सलाह से करें तो अच्छा होगा।
0: अच्छा होता है।
1: जी माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बच्चों के बीच अंतर रखना क्यों जरूरी होता है?
0: क्यों अब बोलती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी, सपोज नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है एक माँ का, उस टाइम पे खून कितना जाता है कि मिनिमल मीन्स थोड़ा से थोड़ा 500 ml हम ले लेते हैं, 500 ml, 500 ml हम ले लेते हैं। उसको बदन फिर से रिकवरी करने के लिए आपको 6 मंथ्स चाहिए, हम वो भी आजकल आयरन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स दे रहा है करके आ रहा है। फिर उसके बाद बच्चा को दूध भी देना है माँ को, दूध आसान नहीं है, माँ का हड्डियों से कैल्शियम जो होता है वो दूध में आता है फिर बच्चा को जाता है, माँ का हड्डी भी वीक हो जाता है। अगर इसमें अगर गैप नहीं रखिए तो माँ का हेल्थ और नीचे चले जाएगा।
1: जी
0: मान लो ये 500 जो ml मैं बोल रही हूँ वो सबके लिए 500 ml नहीं होता, किसी के लिए 700 रहेगा, किसी के 800 ml रहेगा, किसी का 1 लीटर तक भी गया होगा।
1: जी
0: सो इतना खून जब जाने के बाद आप गैप नहीं दे रहे हो, वो माँ का सेकेंड डिलीवरी के टाइम और कॉम्प्लिकेटेड होगी।
1: जी ये कितने दिनों का अंतर होना चाहिए?
0: एटलीस्ट मीन हम लोग नॉर्मल 18 मंथ्स बोलते हैं, बट 3 ईयर्स इज बेटर, 3 साल अच्छा रहता है,
1: जी
0: ये नॉर्मल डिलीवरी। अगर आजकल ऑपरेशन भी हो रहा है, सीजरियन
1: जी
0: सेक्शन भी हो रहा है, सीजरियन सेक्शन का जो बाहर का घाव तो आपको 1 मंथ में सूखा रख दिखता है,
1: जी
0: लेकिन अंदर का जो बच्चेदानी का ऊपर हम जो काटा है वो घाव सूखने के लिए 18 मंथ्स लगेगा। लगने के बाद आपको बॉडी रिकवरी होने में 1 मोर ईयर लगेगा,
1: जी
0: 1 और साल लगेगा, टोटल मिला के 3 ईयर्स। लेकिन मैं जितना भी काउंसिल करती हूँ पेशेंट्स को,

0: कि गैप रखना, इधर पे बोलते हैं मैडम हम लोग देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए, हम डिस्चार्ज कर दीजिए करके जाते हैं,
1: जी
0: फिर 6 मंथ्स के अंदर प्रेग्नेंट होके आते हैं। प्रॉब्लम है कि डिलीवरी के बाद आपको पीरियड्स जो महीना में जो आना है वो बराबर नहीं आता है, क्योंकि आप बच्चों को दूध दे रही है।
1: जी
0: भाई आप आदमी से मिलने से प्रेगनेंसी हो सकता है, अंडा तो निकलता रहेगा लेकिन पीरियड्स तो आता नहीं। बाई मिस्टेक आप प्रेग्नेंट होने से भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं।
1: जी
0: ऐसा लोग आते हैं, कब पता चलेगा? बच्चा जब पेट में हिलता रहेगा, तब तक आप 7 मंथ और हो जाएगी, तब
1: जी
0: तो हम तो बच्चा को कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। एक बच्चा को भी ध्यान नहीं दे पा रही है, पेटवा वाला भी छोटा रह जाएगा।
1: जी तो बच्चों का अंतर रखना बहुत ज़रूरी
0: बहुत
1: होता
0: जरूरी है,
1: है, और
0: वेरी वेरी
1: एक
0: इंपॉर्टेंट।
1: जी माँ का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। डॉक्टर साहब एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो
2: हेलो डॉक्टर, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: लक्ष्मी जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सवाल पूछिए।
2: डॉक्टर साहब, ये जो अपनी मर्जी से जो ओवुलेशन करने के लिए टेबलेट बाजार से ले लेते हैं, ये कितना हानिकारक है? इसके बारे में 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक हमारे मित्र हैं, वो अनपढ़ हैं और उनकी वाइफ पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा भी नहीं है पढ़ी लिखी, ठीक है। तो उन्होंने एक बार तो कामयाबी से ये ओवुलेशन की टेबलेट खा ली, वो कामयाब हो गई। उनके 3 बच्चे ऑलरेडी, तो उन्होंने अपनी समझदारी से फिर सेकंड टाइम फिर ये टेबलेट खा ली। उसके बाद उनका फिर क्या हुआ कि वो चीज गलत हो गई, वो जो भी ओवुलेशन तो हुआ नहीं, वो सरक के वो नल में चला गया। तो वो जो जाने से वो फिर उनको तो समझ में आया कि हम तो अब ठीक है, पर जब वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा तो उनको दर्द महसूस हुआ, तब जाके वो हॉस्पिटल गए, जाके उन्होंने बोला अगर आप और 1 घंटा नहीं आते तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते थे, बचा नहीं पाते। तो ये कितना हानिकारक है, ऐसी चीजें जो बाजार में मिलती हैं, खुद ऑपरेशन करा ले कि अपने तरीके से टैबलेट खा लो, कि अगर ऐसी सहूलियत हो गई है, सहूलियत जितनी ये चीजें बनी है बाजार मार्केट में मिल जाती है आसानी से, उतनी ही ये समाज में हानिकारक भी होती है, ये मैं कहना चाहूंगा। और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
0: जो अबॉर्शन पिल्स होते हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट एक डॉक्टर लिखने के बाद ही कोई फार्मासिस्ट देना होता है। इंडिया में ओवर द काउंटर दे देते हैं, ये इतना हानिकारक कि मैं खुद देखी हूँ। एक माँ मर गई है, वो
1: जी
0: जब मैं लेबर वार्ड में काम करती थी, एक हस्बैंड लेकर आए वाइफ को कि मैडम ब्लीडिंग जा रहा है, 1 मंथ से जा रहे थे। फिर हम देखा पल्स नहीं है, उसका हाथ धड़कन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा पेल हो गई, वाइट हो गई पूरा पेशेंट, हम डेथ डिक्लेयर कर दिया। फिर बाद में पूछने के बाद पता चला कि हस्बैंड ने कोई फार्मेसी से कोई दवा दे लेकर आया दिया है, उसके बाद खून जाता रहेगा जाता रहे, सब सोचता है कि नॉर्मल है। अबॉर्शन पिल्स इतना डेंजर है कि आप खुद से खा ले तो पहले पता होना चाहिए कि बच्चा बच्चा कहाँ है, बच्चेदानी में है क्या ट्यूब में है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है।
1: जी
0: कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चा हो गया तो बच्चेदानी में है, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी में क्या होता है कि बच्चेदानी के बाहर होता है प्रेगनेंसी, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बिना कन्फर्मेशन का आप मान लो आप अबॉर्शन का पिल खा लिया, वो
1: जी
0: फट जाएगा, पेट के अंदर फट जाएगा और खून पेट के अंदर जमा रहता जाएगा 3 लीटर 4 लीटर, इसलिए किसी किसी का डेथ हो जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अबॉर्शन पिल खाने में जो खून जाता है वो नॉर्मल है, 1 हफ्ता तक जाना ठीक है, लेकिन एक हफ्ता किसी किसी को ज़्यादा बह जाता है।
1: जी
0: इसलिए जो अबॉर्शन किसी को करना चाहता है वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास
1: जी
0: जाए,
1: डॉक्टर की
0: डॉक्टर
1: सलाह
0: सलाह के
1: ले।
0: बाद ही
1: जी
0: ले। सब लोग अबॉर्शन के लिए लायक नहीं होता है, किसी लोगों को हम हॉस्पिटल में रख के करना होता है, घर में नहीं होना चाहिए। किसी
1: जी
0: लोग सोचता है कि घर में भी कर लेते हैं, दवा दीजिए डॉक्टर हम घर में खा लेगा, हमको दो दो छोटा बच्चा है उसको भी देखना है, लेकिन किसी का मदर का कंडीशन ऐसा नहीं रहता है कि वो घर में जाके अबॉर्शन पिल खा ले, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम फर्दर
1: जी
0: दवा दे सकते हैं। उसका पहले उसका जांच करना होता है कि कंडीशन कैसा है।
1: तो बिना डॉक्टर की सलाह से कोई घर पर ऐसी जो बाज़ार में मिलती है ऐसी जो दवाइयाँ हैं उसे ना ले, तो आप सभी से निवेदन है। तो डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन को लेकर लोगों के बीच में किस तरह की सामान्य गलत फहमियाँ देखने को मिलती
0: बहुत
1: हैं?
0: गलत फहमियाँ हैं, ये एक चीज़ नहीं, हम तो इतना सुना है कि हम तो एकदम शॉक हो जाती हूँ। एक
1: जी
0: पहले चीज़ है कॉपर टी का, कॉपर टी एक ऐसा चीज़ है हम बच्चेदानी के अंदर रखते हैं, वो 10 साल के लिए आपको प्रोटेक्शन देता है, मीन्स आपको बच्चा नहीं

0: बच्चेदानी में रख, जब तक वो कॉपर्टी बच्चेदानी के अंदर रहता है आपको प्रेगनेंसी नहीं आता है।
1: जी
0: लेकिन किसी को क्या सोचे कि वो बच्चेदानी के अंदर से छाती में चले जाएगा, पेट में चले जाएगा, उसको रखने से किसी को कैंसर हो जाता है, ये सब चीज़ें बोलते हैं।
1: जी
0: एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपर्टी को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर आपको आपका बच्चेदानी के अंदर वो रख देता है। लेकिन इतना गलत फहमी है गाँव में, इवन शहरों में, कि मैडम वो नहीं चाहिए,
1: जी
0: कुछ भी और चलेगा लेकिन कॉपर्टी नहीं चाहिए। और एक चीज़ है कि इंजेक्शन, आप ही डिलीवरी के बाद हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो
1: जी
0: आपको 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में लगाना, तीन तीन मंथ, 3 महीना, 3 महीना लगाना होता है। उसको भी लोगों को क्या लगता है कि वो लगाने से आपको महीना महीना नहीं आता है अच्छे से, फ्यूचर में बच्चा ही नहीं होएगा, ऐसा करके जो पढ़ अनपढ़ लोगों को
1: जी
0: आधा आधा इंफॉर्मेशन के वजह से गलत फहमियाँ ज़्यादा हो रहा है। तो
1: और जो जो महिलाएं शिक्षित नहीं होती, तो उन्हें आप किस तरह की सलाह देती है जो पति पत्नी को?
0: जो शिक्षित नहीं रहता है उन लोगों को थोड़ा ये जो नया टेक्नोलॉजी वाला समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार बार बार उनको बताने से वो भी समझ जाते हैं
1: जी
0: कि क्या गैप क्यों रखना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है
1: जी
0: ना।
1: श्रोताओं, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते एक छोटा सा अंतराल।
2: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
0: इट इज
2: बिजली का
0: गोइंग गुड।
2: बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो
0: एक्चुअली
2: गया।
0: ये अबॉर्शन के
2: बन
0: लिए
2: गया
0: भी
2: बजट?
0: सिस्टम आपका,
2: हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध।

0: डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। तो डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन की जिम्मेदारी क्या केवल महिला की है या पति पत्नी दोनों की है?
1: एक्चुअली ये फैमिली तो पति पत्नी, बच्चा तो पति पत्नी का दोनों का ही जिम्मेदारी है ना। तो
0: जी
1: फैमिली भी डिसीजन, फैमिली प्लानिंग डिसीजन अकेला औरत के ऊपर भी डालना अच्छा नहीं है। तो
0: जी
1: हस्बैंड को भी साथ देना होगा, उसको समझना हो कि वाइफ एक डिलीवरी के बाद, पत्नी की डिलीवरी के बाद क्या से गुजरती है, क्या पेन से गुजरती है, कितना खून चले जाता है। उसको नेक्स्ट बच्चा लेने के टाइम तो देना चाहिए ना, वो तो
0: जी
1: हस्बैंड ही समझेगा। और जो उन लोगों का सास है और ससुर जो भी है घर पे, वो लोगों भी समझाने की पुराना ज़माना का नहीं है। आजकल हाई रिस्क माने सब लड़कियों को कम उम्र से ही खून कम रहना, बीपी आना, प्रेगनेंसी में बीपी भी ज़्यादा आ जाता है, शुगर
0: जी
1: भी आजकल फूड हैबिट्स के वजह से, जो जो आज बाहर का खाने लग गया है, बदन के चेंजेस के वजह से डायबिटीज़ भी, सब प्रेग्नेंट लेडीज़ को आजकल डायबिटीज़ भी
0: जी
1: ज़्यादा हो रहा है। सो सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे आप गैप नहीं दिया, वो कब फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो कॉम्प्लिकेशंस था, उसको बीपी हो शुगर हो, वो पहले कम होना है ना।
0: जी
1: ऐसा नहीं कि फैमिली को जल्दी जल्दी एक बच्चा हो गया एक और होने से अच्छा रहता था करके उनको ऊपर दबाव डाले जा रहा है, लेकिन पहले उसको थोड़ा तो आराम चाहिए। वो तो हस्बैंड ही समझेगा और फैमिली समझेगा।
0: जी
1: आपका
0: परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है।
1: आपका फैमिली के बेटी को तो आपको ही अच्छे से समझना है। और
0: जी
1: जो फैमिली प्लानिंग का जो भी निर्णय है, पहले हस्बैंड एंड वाइफ को डिसाइड करने दीजिए, उसके बाद आप सपोर्ट कर दीजिए उस डिसीजन को।
0: जी बहुत अच्छी बात कही है। आज के समय में परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना क्यों जरूरी होता है?
1: और एक क्या, मीन आजकल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी जल्दी सबके लिए रीच हो जाता है, मीन्स पहुंच जाता है। गलत इन्फॉर्मेशन हर जगह है, यूट्यूब भी, यूट्यूब सोशल मीडिया हर जगह कोई बोलते हैं ये मैंने ये करा दिया है, मेरे साथ ये हो गया है, आप ये मत करो। हर बॉडी अलग अलग रहता है, हर बॉडी के लिए जो दूसरों के साथ हुआ है ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हो, जो बोल रहा है गलत भी हो सकता है। आजकल व्यूअर्स के लिए तो जो भी बोल देते लोग, एक यूट्यूब फ़ोन उठा लो आप, यूट्यूब में बोल दीजिए, लोग यही सच मानने लगा है ना।
0: जी
1: हम लोग इतना साथ

0: पढ़ के हम लोग बोले से तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो भी उल्टा पुल्टा डालते हैं सब लोग वो मानने लगते हैं। वो एक्चुअली वो गलत है, सब जगह रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। पहले आप जाइए, अपना नियर बाई हेल्थ सेंटर जाना है, आपको बदन को किसी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना है, वो डिसाइड बोलेगी आपका बदन में ये प्रॉब्लम्स है, ये मेथड आपके लिए अच्छे करके बोल देंगी। सो आप बाद में जाके आपस में बैठिए, डिसाइड कर दीजिए कि क्या बेटर है। कि एक ही हम ना एक चॉइस ही हम नहीं बताते हैं, दो
1: जी
0: तीन बोलते थे कि आपको जो सूट है वो आप फॉलो कर दीजिए करके। अगर मान लो किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स होता है,
1: जी
0: किसी प्रेग्नेंट लेडी को हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम अगर होके उसके बाद प्रेगनेंसी, एक बच्चा विथ रिस्क आप लेकर डिलीवरी कर सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा वेरी मुश्किल होता है हार्ट डिसीज। जब उन लोगों के लिए हम बोलते हैं परमानेंट मेथड अच्छा है, ऐसा हम एग्जाम्पल बोल रही हूँ। सो हमको लगता है कि फैमिली प्ले बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिसीजन में। हम एक हस्बैंड को भी हम बोल सब जो भी पति है आपका वाइफ को थोड़ा इसी जो ये डिसीजन लेने में मदद करें और सपोर्ट करें।
1: जी, क्या परिवार नियोजन का संबंध केवल बच्चों की संख्या से है या इसका माँ बच्चे पूरे परिवार के स्वास्थ्य से भी संबंध है?
0: एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक
1: जी
0: डिलीवरी होता है आजकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको डिलीवरी तो फ्री में होता है।
1: जी
0: सपोज
1: हाँ
0: आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 50 to 60 thousand, और सी सेक्शन है तो 1 लाख, 1 लाख से ऊपर किसी जगह पे, और
1: जी
0: आप कॉम्प्लिकेटेड केस तो और ऊपर। तो ये रिकवरी कर और उसके बाद बच्चा पैदा होता है, अगर बच्चा में कुछ प्रॉब्लम तो फिर आईसीयू में रख देते हैं, उसका भी
1: जी
0: खर्चा। फिर उसके बाद बच्चा और माँ जो घर पे आता है, उसका दूध, उसका हेल्थ के लिए खाना, ये सब के लिए। अच्छा परिवार है तो थोड़ा मिडिल क्लास है तो मैनेज कर लेगा, थोड़ा
1: जी
0: लोअर इनकम वाले के लिए बर्डन है ना।
1: जी
0: तो
1: मैम
0: ये जो डिलीवरी के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटस जो होते हैं और हेल्थ स्टेटस होते हैं, ये फैमिली के ऊपर पूरा बोझ होता है,
1: जी
0: किसी किसी के ऊपर ना, एवरीवन के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के ऊपर एक बड़ा चीज़ होता है। हेल्थी एक ही चीज़ नहीं है, उसका फाइनेंशियल भी है, और किसी किसी को बच्चा बीमारी होता है बार बार, फिर एक और दूसरा बच्चा फिर से ले लिया जल्दी 6 महीने बिना गैप का, पहला बच्चा को देखेगी कि या दूसरा, या पेट में जो है उसको ध्यान दे पाएगी या फैले पर। एक माँ आई थी, उसका हम सिजरेन किया था, उसका एक और 1 साल के अंदर फिर से प्रेग्नेंट हो गई।
1: जी
0: फर्स्ट बच्चा बार बार बुखार आता है, उसको नहीं देख पा रही है, ये पेट में जो बच्चा है खाना, बिकॉज फर्स्ट बच्चा बीमार है करके वो उसके ऊपर ध्यान दिया, खुद
1: जी
0: खाना टाइम से नहीं खाती थी, हमेशा हॉस्पिटल जाना लेकर आना पहला बच्चा को, या दूसरा बच्चा को पेट में क्या हो गया, छोटा हो गया, मीन्स साइज बढ़ नहीं बढ़ रहा है, 2 kg का ही है।
1: जी
0: और ऐसा बच्चा जब छोटा बच्चा पैदा होता है, सेकेंड वाला बच्चा भी बीमार ही रहेगा ना, ये
1: जी
0: पूरा फैमिली के ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, और पूरा क्या बोलता है, आप अच्छे से कुछ भी नहीं रह पाएंगे, आप बच्चा बीमार हो रहा है, मदर
1: जी
0: भी बीमार हो जाएगी। तो गैप रख के अच्छे से प्लान करके लेने से आपको इतना स्ट्रेस नहीं मिलेगा,
1: बच्चे और माँ दोनों
0: दोनों
1: स्वस्थ
0: दोनों
1: होगा
0: अच्छा रहेगा।
1: जी, और जब बच्चे और माँ स्वस्थ होगा तो पूरा परिवार खुशहाल होगा। तो परिवार नियोजन के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में लोगों को कहाँ से सही और विश्वसनीय जानकारी मिल सकती है डॉक्टर साहबा?
0: कहा जब इन्फॉर्मेशन के लिए पहले आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए, कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट, एनी गायनाकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से सही इन्फॉर्मेशन बताएगी आपका
1: जी
0: बॉडी को जांच करने के बाद। आजकल हम ANMs मिडवाइफ्स को भी ट्रेन कर रहे हैं हेल्थ सेंटर में, विच
1: जी
0: एवर हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, CHCs हो, सेकेंड सब सेंटर्स हो, सब जगह आपको ये फैमिली मेथड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और आप लोग उतना नहीं जा पाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट में मिल जाएगा आपको,
1: जी
0: आप चूज कर लीजिए, फिर आके आपके बॉडी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा है वो हम बता देंगे।
1: जी और यदि किसी दंपति को परिवार नियोजन से संबंधित कोई सवाल या परेशानी हो तो उन्हें किससे सलाह लेनी चाहिए?
0: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गायनाकोलॉजिस्ट है, पहले आप गायनाकोलॉजिस्ट किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके ही आप डिसीजन ले लें। अगर आपका पास वो किसी किसी गांव में तो बगल बगल पे तो नहीं मिलेगा, उधर
1: जी
0: पे जाके आप आजकल तो हम आशा वर्कर ANMs को सब
1: एनम
0: ट्रेन कर रहे हैं,
1: हाँ
0: हर मंथ उन
1: वो
0: लोगों का
1: घर
0: ट्रेन,
1: घर जाकर
0: घर घर
1: लोगों
0: जाके आपको बता देगा, आप पूछने से वो लोग इन्फॉर्मेशन अच्छे से
1: जी
0: दिखाएंगे। या जब आप डिलीवरी के टाइम पे जाते हैं उसी टाइम पे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं।
1: जी क्या परिवार नियोजन के बारे में युवाओं और नवविवाहित

0: विद्यार्थियों में भी जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है।
1: ये नव विवाहित तो जागरूकता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग आप एक दूसरे तो जानते नहीं, अभी शायद नया नया शादी हुआ होगा, उन लोगों का आपस का क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो उन लोगों का पर्सनालिटी दोनों को ये समझने में ही टाइम लगता है। इन बीच में आप अगर प्रेग्नेंट हो गया तो एक और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक बच्चा दुनिया में लेकर आना, साथ में बड़ा करना, तो आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं रहे तो वो मुश्किल है।
0: जी
1: और एक साल, एटलीस्ट एक साल तक सब, हम जितना भी कपल्स को देखा है, सबको एक दो साल का गैप तो मांगते हैं शादी के बाद। सो उन लोगों के लिए भी मेथड्स हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड्स है,
0: जी
1: फॉलो करना अच्छा है,
0: जी
1: अबॉर्शन करने से अच्छा है फैमिली प्लानिंग
0: जी परिवार
1: घर की
0: नियोजन के
1: रचना के
0: बारे में
1: बारे
0: सही जानकारी हो तो जो बच्चे
1: में।
0: हैं उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है और परिवार का भी। डॉक्टर साहब, अंत में सही जानकारी सही निर्णय के संबंध के साथ हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे आप?
1: हम ये कहना चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स अच्छा है, अगर आपको एक बच्चा चाहिए कि या दो बच्चा, आप अपना फैमिली से बैठ के डिसाइड कर दीजिए, और गैप रखना बहुत ज़रूरी है, ये माँ का हेल्थ का विषय है, उसके
0: जी
1: लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो गैप रखना है। किसी किसी माँ अपना जान खो लेते हैं कि जल्दी बच्चा पैदा करने से,
0: जी
1: गैप नहीं रखने से, एक साल के अंदर दो दो बच्चा गैप नहीं रखा, एक साल के अंदर दूसरा बच्चा भी आ गया तो बॉडी ऑलरेडी रिकवरी नहीं हुआ है, तो किसी किसी माँ का जान भी चले जाता है। सो इंडिया में आज का मेटरनल मोर्टालिटी, कि माँ जो डिलीवरी के टाइम में डेथ होता है, आजकल भी थोड़ा हाई ही है, इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा गैप दीजिए, उसका थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, फैमिली मेथड फॉलो कर दीजिए। अगर आपका फैमिली बस है, दो बच्चा बस है, तो परमानेंट मेथड भी कर दीजिए, अबॉर्शन करने से अच्छा है हमको लगता है फैमिली प्लानिंग मेथड फॉलो करना है।
0: जी बहुत अच्छी बात कही है। समय के अभाव के कारण यह रुकना चाहूंगी जाते। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय था परिवार नियोजन, सही जानकारी सही निर्णय। अतिथि थी जीवी पंत अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीवना रेड्डे। तकनीकी सहयोग दिया वी नटा किशोर और एन दंडापानी ने। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लक्ष्मी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, इस वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक शक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं। नए कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 39 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती है। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के

0: अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जल भराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर खासकर उत्तरी और पश्चिमी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्य और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
5: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान

0: देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे

0: के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के सातवें दिन कल भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy rainfall. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in summer.

श्रोताओं, राधा सलोजा की स्वर में के शैलेंद्र का लिखा गीत सुनने के बाद आप सुनिए कमलिनी मल्होत्रा की आवाज़ में समीर जलालाबादी का कलाम।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब सुनिए चंद फिल्मी गाने।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का ये गाना।
1: क्या आप जानते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, HIV एंड AIDS प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका HIV स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका HIV टेस्ट कराना या HIV स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की HIV टेस्ट के समय प्री और पोस्ट HIV काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
2: दुर्गा पूजा को मनाइए गोइंकास के साथ।
3: मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर और साड़ियों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन
2: गोइंकास के एबरडीन बाजार, भाटोबस्ती, बम्बू फ्लैट और डिगलीपुर शोरूम में आइए और आकर्षक ऑफर्स पाइए।
3: जीन्स केवल 499 रुपए से शुरू,
2: शर्ट 490 रुपए,
3: क्रॉप टॉप और टी शर्ट 199 रुपए
2: और कुर्ती सिर्फ 190 रुपए से शुरू।
3: सूट पीसेस, वेस्टर्न टॉप्स, कढ़ाईदार कुर्ती,
2: रेडीमेड सूट, ब्रांडेड शर्ट, टी शर्ट के नए कलेक्शन के लिए
3: अपने पूरे परिवार के साथ आइए गोइंकास।
0: एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर सन 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

श्रोताओ, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में झुमरू फिल्म का ये गाना। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:10 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग

0: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरत नाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
2: शुक्रिया फरहत।
1: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
3: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
1: जी।
3: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
1: जी सर।
3: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से एक रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
1: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
2: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
1: सर, ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गाँव बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
1: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
3: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है, और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो

0: मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके,
1: जी
0: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में इनसैट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके, और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है,
1: जी
0: ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
1: जी तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
2: नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि
1: जी
2: अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे
1: जी
2: अब मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहां आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था।
1: जी
2: एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है, मनु भाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है, और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का
1: जी
2: एक मौका मिला है भारत को, और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो
1: जी
2: या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट्स।
1: राजा रमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
2: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए,
1: जी
2: पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है,
1: जी
2: और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज
1: जी
2: वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं।
1: बिल्कुल
2: पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है, ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
3: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन्स की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार

0: के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
1: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास। और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
2: एक तो जब हम हाथ से काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा। तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं?
2: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम खत्म में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है। और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है, वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काईरूट का जो Vikram-1 जो उन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
2: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से। उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था, तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर, वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राजारमन जी, आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
3: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
1: और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
3: बिल्कुल है। और अगर हम फिट

0: के अभी बात करते हैं,
1: हाँ.
0: तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो, और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है. एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा. यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही और अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे. बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए.
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
0: इसके वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए जो छोटे शहर से आते हैं या गाँव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं. शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है. हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गाँव को सुधारना चाहते हैं.
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
2: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो, और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था. जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है.
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
2: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी.
1: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना. राजरमन जी,
0: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा. अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियंस पैदा करें, शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है. अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है.
1: तो राजरमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
0: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है. हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है. खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा.
1: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी, क्या होना चाहिए?
2: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है. मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं. और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं. वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रहे थी, क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स है, उनके 3-4 साल पूरे हो जाने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था. और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए.
1: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआत

0: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया।
1: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है, और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
0: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं। तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इम्पोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
0: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
2: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं। बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं। दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
0: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
2: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है, और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
0: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने को मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
1: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशंस, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे और

0: जाकर हम जब SLV का काम करने चालू कर दिया, तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर है, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसीलिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता
1: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
2: है। बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी
1: जी
2: आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाएं, और बेहतर ही हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप
1: जी
2: बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की
1: जी
2: कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते
1: और
2: हैं।
1: अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
0: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और
1: जी
0: जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
1: जी राजा रमन जी
2: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया है कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा, और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
1: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
0: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो
1: जी
0: सकता है।
1: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के जो युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं। वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने
0: हमने
1: अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
0: जब इनसेट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट 1B का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं, और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स
1: जी
0: में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि
1: जी
0: किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं, वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजा रमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?

0: अगर डिप्रेशन की बात करें
1: जी
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर लें, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को खेलना होता है।
1: जी
0: जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी,
1: जी
0: और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर
1: जी
0: रहेगी।
1: राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है। तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
0: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी,
1: जी
0: मैं बहुत ही युवा था तब, तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं। 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है। सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू के हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल हैं जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया
1: जी
0: है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं,
1: जी
0: कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिमनास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का भला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: जी
0: है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स।
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा। मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। और श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
2: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजीम बनाए, और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, वो जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो, तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी, तो उनकी शिक्षा जो है वो
1: जी
2: कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती। उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए, और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक
1: जी
2: रेजीम बनाना चाहिए।
1: राजारमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
0: ये बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी हैं तो यू कैन ज्वाइन इन, और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें, और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें।
1: जी
0: वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए, और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:46 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए कुछ फिल्मी गाने।

0: एक कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं।

योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रेडी से, तुलसी कुमार और के आवाज़ों में। गीत रचना नीलेश मिश्रा की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में सुनिए फिल्म आशिकी का ये गीत। गीत रचना समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

जावेद अख्तर का लिखा हुआ अमित त्रिवेदी की संगीतबद्ध, श्रोताओं सुनिए वेक अप सिड फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कविता और अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोताओं, अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ दी है रूप कुमार और राठौर ने। फिल्म का नाम है अनवर। गाने के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

जावेद अख्तर का लिखा हुआ, ए आर रहमान की संगीतबद्ध, श्रोताओं सुनिए फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग का गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और रीना भारद्वाज ने।

हॉन्टेड 3D श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत के और सुजैन की आवाज़ों में। शकील आज़मी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है चिरंतन भट्ट ने।

श्रोताओं सुनिए, लव रंजन का लिखा व क्लिंटन के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म प्यार का पंचनामा का गीत सोनू निगम और न्यूमन पिंटो।

कुछ लव जैसा फिल्म का गीत सुनिए, मोहन मोहित चौहान और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने

0: श्रोताओं सूचना,
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
2: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट, कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
0: सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं अगला गीत शान की आवाज में, फिल्म मी एंड मामू 7 का गीत, गीत रचना अमित की और संगीत दिया है चंद्र विशाल संजय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ऑलवेज कभी कभी से। भवेन, सना और हरप्रीत सिंह की आवाज़ों में, गीत रचना अमित भट्टाचार्य की और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कॉलेज कैंपस श्रोताओं, इस फिल्म का गीत सुनिए फरीब सबरी और मंजीरा के आवाज़ों में। किशोर चंचल और साहिल सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अतुल ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में सुनिए फिल्म विरासत का गीत। गीत रचना जावेद अख्तर की और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

जावेद अख्तर का लिखा हुआ, अनु मलिक का संगीतबद्ध किया। श्रोताओं सुनिए फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

जावेद अख्तर का लिखा हुआ, अनु मलिक का संगीतबद्ध किया। श्रोताओं सुनिए फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

अगला गाना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दुश्मन। गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विश्वात्मा का गीत। अमित कुमार, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है वीजू साह ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम गीत गुंजन अब यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम कहानी से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छाया से तलत महमूद की आवाज़ में। गीत रचना रजिंदर किशन की और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए फिल्म झूला का ये गीत। गीत रचना सलिल चौधरी की और संगीत भी दिया है सलिल चौधरी ने।

हजरत जयपुरी का लिखा हुआ दत्ताराम का संगीतबद्ध किया हुआ, श्रोताओं सुनिए फिल्म परवरिश का ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने।

अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत। गाने के बोल लिखे हैं पद्मा सचदेव ने और संगीत दिया है जयदेव ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बावर्ची का गीत, ऋषिकेश मुखर्जी की आवाज़ में। संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 654 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम ने विकासशील देशों की आवाज और प्रभुत्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जनकेंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:11 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए प्रकृति की बात। आकाशवाणी
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं राकेश पंत।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बसंती देवी, जो महान पर्यावरणविद हैं और प्रकृति की संरक्षण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बसंती देवी उत्तराखंड की धरती पर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को एकजुट कर कोसी नदी को बचाने के साथ ही जंगलों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर 5 के जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम चलाई। उनके इसी काम को देखते हुए सन 2016 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान और 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया। तो बसंती देवी जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बसंती जी। तो आपसे जानना चाहूंगा, कोसी नदी और उसके जलागम क्षेत्र को बचाने की आपकी मुहिम की शुरुआत कैसे हुई, तब क्या परिस्थितियां थी, आपने किस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ाया?
3: पहले तो उस नदी में बहुत पानी था, खेतों में भी इतना अच्छा जमीन में पानी और सब खेती पाती होती थी। धीरे धीरे जब जंगल पूरा काट दिया महिलाओं ने, जंगल काट के तो पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए और इसलिए बहुत परेशानी होगी। तब लोग कहने लग गए, अब हम पानी भी कहाँ से पिए और खेती में भी, हमारे खेतों में भी पानी नहीं आ रहा है। तब मैं गांव-गांव में जाकर मैंने महिला संगठन बनाया। मैंने कहा, जब पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे यहाँ तो इतनी अच्छी खेती होती थी और इतना ज्यादा पानी आता था और नदी में और सब कुछ था, जब पानी नहीं आएगा तो कहाँ से पियोगे पानी, कहाँ से खेती होगी और कैसे हम जिंदा रहेंगे, तो इसके लिए तो तुम सब सोचो। मैंने कहा, जंगल जब पूरे पेड़ काट दे रहे हो और फिर वो सड़ जाते हैं तो उनको फिर तुम जला देते हो, तो तुमको ये सोचना चाहिए कि जब जंगल बचेगा, पानी आएगा, तब खेती भी अच्छी होगी, अपने लिए भी, हमारे पानी पीने के लिए और रुपाई करने के लिए, खेती पाती सब ठीक करने के लिए भी तब अच्छा होगा, तब हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा ही कैसे रह सकते हैं। मैं फिर 6-7 दिन के बाद जंगल के रास्ते

0: गई तो महिलाओं से कहा, बैठो आप, मैं तुमको सब बात सुनाती हूँ। जब जब पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा कैसे रहेंगे, खेती कैसे होगी, और ये तो तुमको सोचना ही चाहिए। मैं आज तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, तुम अभी जंगल से अब घर को चलोगे, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में, सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए। जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
1: भक्ति, जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीजें?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहाँ प्रकृति ऐसी हो गई, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा

0: बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए। जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
1: भक्ति, जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीजें?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहां प्रकृति ऐसी हो गई, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और में लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी। तो यही, इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी। तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई, सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं और तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया। तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया, तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए हैं, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने भी आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं बसंती जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है आपको?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव गांव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर दिया, और लड़कियों को भी, जब हमने बालवाड़ी में, एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए। तो और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, और बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है, और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो

0: महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के, और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संदीप जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें? क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है, जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको अभी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:21 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के हमारे कलाकार हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। पेश है इनके स्वर में चंद गजलें।

0: श्रोताओं, इसके साथ ही यह कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सच्चा झूठ के इस गीत के साथ। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान का।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, अंजलि कारवां, बाला साहेब कारवां, जयश्री महेत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे ने।

मजनू का टिल्ला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, हमारी ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म मर्द का ये गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला मर्द टांगे वाला वो मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर

अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं तो कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। राखे ताइया मार सके ना कोई, अरे जाको राखे ताइया मार सके ना कोई, अरे बाल बाका कर सकेगा जो जग मेरी होए होए होए।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म शिवाय का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज किया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

बन्ने बुजुर्ग बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है फिल्म लव के इस गीत के लिए। तो लीजिए सुनिए इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: silver and 13 bronze. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जनकेंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की

0: अंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुक

0: जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल

0: करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
1: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाज

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा अथवा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। एक या दो स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिंदा, नूर, रॉय, आ अब लौट चले, सनम, तुमसे अच्छा कौन है, साजन, हम साथ साथ है, गबर इज बैक के कुछ फिल्म के कुछ गीत सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक अब यही समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम

मैकेनिकों के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दस से, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना समीर की और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वेलकम से। आनंदराज आनंद और श्वेता पंडित के आवाज़ों में गीत रचना अनजान की और संगीत दिया है आनंदराज आनंद ने।

समीर का लिखा हुआ, हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया हुआ, श्रोताओं सुनिए फिल्म 36 चाइना टाउन का गीत, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया और अलका याग्निक ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ

टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुकसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है, लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं और यह खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में यह सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खानपान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर तब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिलाएं खुद से ही दवा ले लेती है या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए सप्लीमेंट्स लेने से

0: पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 mg या 500 mg। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट या बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़े शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले। कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 19वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष वाकल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बंगला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में आप सीपी घाट के श्री शिवराम से की गई बातचीत सुनेंगे, दुग्ध उत्पाद फायदे का व्यवसाय। अंग्रेजी कार्यक्रम में 6 बजे

30 मिनट पर आप नेल्सन पॉल टोपो की वार्ता सुनेंगे, द एंकर इन द स्टॉर्म, वाई वी नीड हॉबीज। क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत आप विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, सेवा संकल्प अभियान पीएम स्वनिधि योजना, 6:45 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएँ बताया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में कार्यक्रम होगा बातें मुलाकातें। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद लेंगे रात 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप विद्वान सालेम के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन सुनेंगे और विद्वान चिन्ना वक्टा सुपेनैया को सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये तो थे आज के इस समय प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्रीटिप्स में जानेंगे जैविक कीटनाशक नीम व ट्राइकोडर्मा के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा सफर शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50 पर। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएँ। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देश रागिनी का आप आनंद ले पाएंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कवल सिद्धू, सुधा सिंह और पंकज उदास 8:30 पर। सुबह 9:00 बाल जगत के कार्यक्रम में आप विश्व पर्यटन दिवस पर डॉक्टर राजा शेखरन से वार्ता, भगत सिंह की जयंती पर चर्चा और लता मंगेशकर की जयंती पर जानकारी दी जाएगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप अली अहमद हुसैन और साथियों के का शहनाई वादन सुनेंगे 9:30 पर। सुबह 10:00 हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। दिन के 11:00 मन की बात के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे, जिसे आप दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 आप सुनेंगे नाटक। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में पुराने गीत सुनवाए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे विशु भटनागर दोपहर 1:10 पर। 1:30 पर आप घर संसार कार्यक्रम सुन पाएंगे। दोपहर पर 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें गीत लहरी, 3:00 एल्बम गीत और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो आप सुनेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा भक्ति गीत सुनवाया जाएगा। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे बहारों की शाम, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में आप पुराने फिल्मी गीत सुन पाएंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:00 महिलाओं के पसंद पर फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा संगीत संगनी। क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत सेवा संकल्प अभियान में आप सुनेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में 6:30 पर। देश गान का समय रहेगा 6:45। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएँ आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स, साथ ही विश्व पर्यटन दिवस पर चर्चा आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियोस्कोप, रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में आप एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन सुनेंगे, जिसे

अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, लेकिन रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष होकर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म भूल भुलैया के एक गीत से। सैयद कादरी के बोल को संगीत दिया है प्रीतम ने तथा गायक है केके।

अदनान सामी और तुलसी कुमार की आवाज़ों में सुनते हैं फिल्म डार्लिंग का ये गाना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अब एक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे है, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणकम तमिल अमदम वणकम नेयर्गले।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को जोया की ओर से प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, मुश्किलें जीवन का वह अध्याय है जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी से पूरी तरह हटा नहीं सकता, लेकिन यही मुश्किलें हमें सिखाती है जो आसान समय कभी नहीं सिखा सकता। जब जीवन में सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई दे, तब भी हमें अपने भीतर की उम्मीद को जीवित रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमारे बहुत करीब होती है लेकिन हम थक कर उससे कुछ कदम पहले ही रुक जाते हैं। इसलिए कठिन समय में हार मानने के बजाय खुद से कहना चाहिए, यह समय भी गुजर जाएगा। तो साथियों, मुश्किल परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, हमें धैर्य रखकर उनका सामना करना चाहिए। आज के इसी विचार के साथ चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, बीजू नारियल किस तरह के पौधों से नहीं छाटे जाने चाहिए।

प्रश्न में एक बार फिर दोहरा देती हूँ, बीजू नारियल किस तरह के पौधों से नहीं छांटे जाने चाहिए? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए, कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपको दे देते हैं छोटी सी जानकारी परंपरागत कृषि विकास योजना के संदर्भ में।

पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती सेहत के लिए लाभकारी होती है। जैविक खेती में कम कीटनाशकों का उपयोग होता है। इसके अलावा जैविक खेती भूजल और सतह के पानी में नाइट्रोजन की लीचिंग को भी कम करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को जैविक खेती करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परंपरागत कृषि विकास योजना को सॉइल हेल्थ योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जैविक खेती के स्थायी मॉडल को विकसित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण, आदनों के लिए प्रोत्साहन, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर के लिए 14.95 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता मोबिलाइजेशन, मनूर मैनेजमेंट एवं PGS सर्टिफिकेट के एडॉप्शन के लिए प्रदान की जाएगी। 50 एकड़ या 20 हेक्टेयर के क्लस्टर के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया की जाएगी। खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन संचयन की गतिविधियों के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अधिकतम 50,000 रुपए की राशि प्रति हेक्टेयर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा कुल सहायता में से 4.95 लाख रुपए प्रति क्लस्टर PGS प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण को जुटाने और अपनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को मुहैया कराया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में भी लाभकारी साबित होगी। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से रासायनिक मुक्त एवं पौष्टिक भोजन का उत्पादन हो सकेगा, क्योंकि जैविक खेती में कम कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना देश के नागरिकों की सेहत में सुधार करने के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इस योजना के माध्यम से जैविक खेती को क्लस्टर मोड में बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी आरंभ किया गया है।

0: साथियों, अभी आपने परंपरागत कृषि विकास योजना के संदर्भ में ये छोटी सी जानकारी हासिल की और अब चलिए हम आपको सुनवा देते हैं आज की बातचीत, जिसका विषय है दुग्ध उत्पादन फायदे का व्यवसाय। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सिप्पी घाट के श्री शिवराम जी।
1: किसान साथियों, आज हमारे बीच

0: सिप्पी घाट के रहने वाले शिवराम जी मौजूद हैं। शिवराम जी कुछ पशुपालन से जुड़े हुए हैं और ये दूध उत्पादन के साथ साथ नारियल और सुपारी के बागानों का काम भी करते हैं। तो चलिए भाइयों, इनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि ये क्या कुछ कार्य करते हैं। शिवराम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शिवराम जी, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आप दूध उत्पादन और नारियल और सुपारी के बागानों का काम करते हैं, तो हम सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहेंगे कि पशुपालन के साथ आप जुड़े हैं और दूध उत्पादन का काम करते हैं, तो बताइए कि कितने पशु हैं आपके पास?
1: हमारे पास पशु से ज्यादा थे, लेकिन चारा नहीं मिलने की वजह से कम कर दिया। अभी हमारे पास 8 या 10 पशु
0: है। क्या है, गाय है या भैंस है? भैंसी है। अच्छा, और भैंसी जो है उसकी नस्ल क्या है?
1: वो यही अंडमान की है।
0: अंडमान की लोकल नस्ल है। अच्छा, तो घर में ही रखा हुआ है या उसके लिए कोई अलग जगह है?
1: अलग जगह नहीं, घर के सामने में बगीचा जगह है, उसी में रखा है।
0: उन्हीं में रखा है। तो सारी भैंस जो है वो दूध देती है?
1: मतलब दो देती है, तो दो ब्याने को तैयार है, इस तरह चलता है।
0: अच्छा, एक भैंस एक दिन में कितना दूध दे देती है?
1: डायरी का
0: एक टाइम में, सुबह में, शाम को भी इतना ही देती है?
1: देती है।
0: तो आपके पास कुल कितना दूध हो जाता है एक दिन में?
1: एक दिन में हमारे पास 9 लीटर 10 लीटर
0: काफी हो जाता है। अच्छा, तो इस दूध को आप बिक्री करते हैं? बिक्री करने के लिए क्या आपको शहर में जाना पड़ता है?
1: नहीं, वो ठेकेदार जो है वो आके खुद दिया,
0: ठेके पे दिया हुआ है आपने ये? तो वो दूध किस हिसाब से लेते हैं, उसका रेट क्या है?
1: 60 रुपए के जी लीटर
0: आपसे लेते हैं?
1: और वो तो कितना भी देते हैं, तो बढ़ा के देते हैं
0: जी।
1: लेकिन हम लोग से वो क्यों, हम लोग दूर जाने का वजह से हम लोग गरीब में उसको बेच देते हैं।
0: हाँ,
1: तो 50 रुपया 60 रुपया का हिसाब से हम लोग को पेमेंट करते
0: हैं। बढ़िया है। तो आपने बताया कि आपके घर को चलाने की जो आमदनी है वो दूध उत्पादन से हो रही है, है ना? इतनी आय हो जाती है जिससे कि आपका गुजारा आराम से हो जाता है।
1: लेकिन कंट्रोल करके चलाना पड़ता है, फैमिली बड़ा है
0: जी,
1: उसमें हमको दवाई का देखना है, बच्चों का देखना है, कपड़ा लगता है, उसको देखना है।
0: हाँ, लेकिन उसके बाद भी आपका परिवार जो है वो चल रहा है इस काम से,
1: उससे गुजारा चल रहा,
0: गुजारा चल रहा है
1: करके हमारा।
0: हम अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने पशु रखे हुए हैं घर में, तो पशुओं से जब आप उत्पाद लेते हैं, उनसे मिलने वाला उत्पाद तभी पोषक होगा जब वो स्वस्थ होंगे, है ना? कभी कभार बीमारी जो है हम मनुष्यों की तरह पशुओं में भी आ जाती है, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो आपकी भैंसों में प्रायः देखने को मिलती है?
1: कभी पैर की बीमारी हो जाती है, खुर का, चलने में तकलीफ होता है।
0: अच्छा, तो इस बीमारी के क्या लक्षण है?
1: ये जो वेटरनरी वाले है जी, वो आके देखते हैं।
0: नहीं, आप कैसे पहचानते हैं कि पशु बीमार है आपका?
1: वो पैर से लगा के चलता मालूम हो जाता।
0: अच्छा, तो उससे अंदाज लग जाता है कि ये बीमारी होने वाली है या हो गई है। अच्छा, फिर आप वेटरनरी को कांटेक्ट करते हैं?
1: करते हैं, वो आते हैं, दवा हुआ देते हैं, फिर जो सजेशन देना वो हमें देते हैं, फिर उसका देखभाल हम लोग करते हैं,
0: ठीक हो जाते हैं।
1: ठीक हो जाते हैं।
0: तो इसके अलावा और कोई समस्या जो मेडिकल से रिलेटेड पशुओं में क्या होती है?
1: पशुओं में जैसे छोटा बच्चा है, दूध नहीं पीता है
0: जी,
1: उसका पेट में दूध जम जाता है
0: जी,
1: उसका वास्ते थोड़ा डॉक्टर को देना पड़ता है।
0: तो आपको जाना पड़ता है? वेटनरी कितना दूर है आपके गाँव से?
1: हमारा बातू बस्ती
0: तक। तो आप जाते हैं या वो लोग यहाँ आते हैं?
1: बातू बस्ती भी है और आपका मंगलूटान
0: भी है जी।
1: तो हम लोग को नजदीक पड़ता है मंगलूटान, तो यहाँ चले जाते हैं। अगर मंगलूटान नहीं जाते हैं तो हम लोग बातू बस्ती चले जाते, तो दोनों जगह से हम लोग को हेल्प मिलता है,
0: मिल जाता है, पशु ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके खान पान पर। खाने की क्या व्यवस्था है? चारा जो है इनको, जो दिया जाने वाला चारा है, उसका इंतजाम किस तरह से होता है?
1: चारा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चारा का है
0: यहाँ पर
1: हम लोग के लिए
0: जी।
1: क्यों कि हमारे पास में चारा उगाने के लिए जमीन नहीं।
0: अच्छा,
1: हमारा जो जमीन उगाने का जो चारा था वो हमारा खारा पानी भी हुआ सुनामी से
0: जी, ऐसा वो सारा बंजर हो गया
1: जी। अभी हम लोग जानवरों के ऊपर और जो जानवर जो जगह थोड़ा खुला हुआ है
0: जी,
1: उसमें जो चारा पशुओं को मिलता है उसी से गुजारा।
0: हाँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि चारा आपके गांव में मुश्किल है क्योंकि चारे का उत्पादन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जमीन नहीं है आपके पास।
1: नहीं।
0: अच्छा, जमीन ना होने की वजह से तो आपको चारा बाजार से खरीदना पड़ता है?
1: दाना खरीदना पड़ता है आपको?
0: दाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है?
1: जहाँ पर में चक्की है।
0: अच्छा, बाजार में, मतलब
1: बाजार
0: जी,
1: आपका डालीगंज में है, आपका पात्रापुर में है, तो यहाँ से

0: लोग को रहना पड़ता है।
1: अगर जमीन होती आपके पास तो आपका कहना ये कि आप चारा घास लगा सकते थे और है ना वो खर्चा जो था वो काफी हद तक बच जाता। अच्छा अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे संयोग बने कि जो बंजर जमीन है वो ठीक हो जाए तो आप है ना खेती करके चारा जो है उसका इंतजाम किया जा सकता है। अच्छा शिवराम जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप नारियल और सुपारी के भी कुछ बागान रखे हैं, उनके बारे में बताइए कि वो उसमें किस तरह से काम करते हैं और कितने पेड़ हैं नारियल के?
0: नारियल के ज्यादा नहीं, 50-60 पेड़ है।
1: और सुपारी के?
0: सुपारी के थोड़ा ज्यादा है, 1000 के करीब।
1: तो बढ़िया उत्पादन हो जाता होगा उससे,
0: लेकिन जमीन में अभी ताकत नहीं है, जमीन थोड़ा कमजोर हो गई है तो फल थोड़ा फसल जो है वो थोड़ा कम पड़ता है।
1: हाँ देखिए शिवराम जी, हम रोज सुनते हैं कि मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, है ना? प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, तो इसके लिए आप कैरी या कृषि विज्ञान केंद्र उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं?
0: उनसे किया था, वो हमारे यहाँ के मट्टी वगैरह सब चेक करा है
1: जी।
0: चेक करने से फिर बताया है कि मट्टी में आपका कुछ कमी है
1: जी, तो फिर उसका निदान भी जो है उन्हें किया जाता है।
0: चल रहा है ना
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उसका निदान हो जाएगा और आपकी जो भूमि है वो वापस उपजाऊ हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो आप अभी आपको जो सुपारी का और नारियल का जो उत्पाद प्राप्त होता है तो वो क्या है, उससे आय जो है कुछ होती है कि
0: बस थोड़ा बहुत हो जाता है?
1: अच्छा,
0: नारियल का आपका किलो के हिसाब से 24 रुपए के जी करके नारियल, और सुपारी जो है छिल के देना पड़ता है उसको, तो वो 250-300 रुपए के जी करके वो लेते हैं,
1: वो भी बेच जाती है। तो नारियल सुपारी जो है ये भी आपके लिए अभी आय के स्रोत है, लेकिन आपका कहना यही है कि अगर हमारी जो बागान है उनकी मिट्टी जो है वो अस्वस्थ हो जाए तो इनका जो पैदावार है उत्पादन और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना?
0: हमारा आमदनी बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, नारियल से आप है ना सिर्फ नारियल को डाब के रूप में या नारियल कोड़े के रूप
0: में करके हम लोग नारियल के रूप में
1: बिक्री करते हैं, बाकी मतलब कुछ तेल वगैरह नहीं निकालते?
0: कोई साधन
1: नहीं है ना। हाँ, तो ये आपका सीपी घाट बाजार में ये सब बिक्री हो जाता है या इसके लिए भी बाजार ढूंढना पड़ता है?
0: कुछ कॉन्टेक्ट
1: हाँ
0: वो खुद आके
1: ले जाते हैं, तो घर से ही आपका सब चला जाता है। तो दूध और नारियल सुपारी से आप मिला जुलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। शिवराम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों ही काम और ज्यादा बढ़े और आपके लिए ये आय के और अच्छे स्रोत बने और आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे साथ इतनी बातें बांटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सिप्पी घाट के श्री शिवराम जी से की गई ये बातचीत सुनी जिसका विषय था दुग्ध उत्पादन फायदे का व्यवसाय। और अब आइए कार्यक्रम के माहौल को बना देते हैं थोड़ा सा रंगीन इस प्यारे से गीत के जरिए।

0: अभी आपने गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर सराहा होगा।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: साथियों, बदलता हुआ मौसम खेती किसानी के कार्यों में कई तरह के बदलाव लाता है, और हमारे किसान भाई पूरी तरह से मौसम के ऊपर निर्भर रहते हैं अपना कृषि कार्य करने के लिए। बदलते मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपको सुनवा देते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श।
4: किसान भाइयों, मौसम संबंधी अनुमान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है, जो अगले 48 घंटों में और गहरा हो सकता है। इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों के दौरान हमारे इस द्वीप समूह में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर सहित पूर्वी तटीय इलाकों में लगातार भारी गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। साथियों, इस मौसम में कृषि कार्यों पर जो काम किए जा सकते हैं, कुछ जरूरी सलाह आपको दी गई है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं।

0: साथियों, फसलों की कटाई, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसलिए यदि खरीफ फसलें जैसे शुरुआती धान, मक्का पक चुके हैं तो तुरंत कटाई कर ले और सुरक्षित स्थान पर रख दे। साथियों, भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो सकता है। धान, सोयाबीन, कपास और सब्जी के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध रखें ताकि फसलें गल न जाएं। सिंचाई और खाद के बारे में ये बताया गया है कि अचानक तेज बारिश की संभावना है, इसलिए अगले 3-4 दिनों तक फसलों में किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव या यूरिया खाद डालने का काम रोक दें। कीटनाशक छिड़काव के बारे में भी यही सलाह दी जाती है कि उमस और नमी से कीटों का खतरा है। हवा में नमी बढ़ने से फसलों में कीट और बीमारियां बढ़ सकती है। मौसम साफ होने पर ही कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान साथियों, विशेष सावधानी के तौर पर बताया जाता है कि तेज आंधी की चेतावनी को देखते हुए बारिश के समय किसान भाई खेतों में काम करने से बचे और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें। किसान साथियों, मौसम साफ होने पर ही खेतों में और समुद्र में जाएं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखना जरूरी है।
1: अभी आपने मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सुना, जो हमें प्राप्त हुई थी केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से। अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था, बीजू नारियल किस तरह के पौधों से नहीं छाटा जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, कम उत्पादन देने वाले बीमार कीट ग्रस्त पौधों से बीजू नारियल नहीं छाटे जाने चाहिए। जानवरों के घरों और खाद के गड्ढों के पास के पौधों से भी बीजू नारियल नहीं छांटे जाने चाहिए। तो अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।

इसी के साथ आज के हमारे किसानवाणी कार्यक्रम का समय अब यहीं पर पूरा होता है। सोमवार शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम।
1: दिस इज आकाशवाणी श्री विजयपुरम। इन टूडेज इंग्लिश प्रोग्राम यू विल लिसन टू अ टॉक ऑन द टॉपिक द एंकर इन द स्टॉर्म, व्हाई वी नीड हॉबीज। द टॉकर इज नेल्सन पॉल टोप्पो।

लीजिए अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में विश्व पर्यावरण दिवस पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिम्पसन से ली गई विशेष भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा पर्यटन के रंग में अंडमान निकोबार, साथ ही कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी श्री विजयपुरम के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनसेवा, सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा रहा है। सार्वजनिक जीवन की यह लंबी यात्रा सेवा को संकल्प और संकल्प को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रयास रही है। इसी सोच के साथ सरकार विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक विकास के लाभ पहुँचाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। श्रोताओं, सेवा संकल्प अभियान की इसी विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी योजना की जिसने छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता का अवसर दिया है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। इससे पहले कि हम पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी आप तक पहुंचाएं, हम आपको सुनवाना चाहेंगे मन की बात का वह हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना का उल्लेख किया है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती है। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी लगाने वाले और छोटे कारोबारी अपने व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता और हमारे द्वीप समूह में इसके प्रभाव के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है कैनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक देवलीन दत्ता। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैडम।
1: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है और इसे शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई।
3: जी, सबसे पहले तो मैं पीएम स्वनिधि का अर्थ मैं बता दूं
1: जी।
3: पीएम स्वनिधि मतलब कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना जून 2020 में शुरू की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और जो छोटे कारोबारियों को आसान और सरल तरीके से बिना किसी कोलैटरल के, बिना कोलैटरल फ्री जो बोला जाता है
1: जी,
3: उसके तहत लोन उपलब्ध कराना है
1: जी।
3: ये योजना जब 2020 में कोविड से, जब महामारी से, जब विश्व में

0: बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, और हमारे देश में भी बहुत सारे जो कारोबार है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और जो छोटे कारोबारी हैं
1: जी
0: उनको पूंजी की बहुत कमी भी हो रही थी, और बहुत सारे जो उनके कारोबार है बहुतों का बंद हो गया था या फिर बहुतों का कारोबार लॉस में चल रही थी। उसको ठीक करने के लिए उस समय ये जो योजना है पीएम स्वनिधि योजना
1: जी
0: उसको लाया गया, ताकि उस समय जो पूंजी की ज़रूरत लोगों को थी, स्ट्रीट वेंडर्स या छोटे कारोबारी को, उनको ये मिले। और बस वो पूंजी ही नहीं, वो एक इस योजना के तहत एक फॉर्मल बैंकिंग के अंतर्गत वो आ सके। क्योंकि हमने देखा है कि पारंपरिक जो बैंकिंग है उसमें जब लोग जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स या छोटे कारोबारियों सब जब जाते हैं, तब उन्हें बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से उस पूंजी को मिलने में उनको बहुत मुश्किलें आती है, या तो फिर उन्हें कोलैटरल देना पड़ता है,
1: जी
0: कुछ गिरवी रखना पड़ता है। इसी को सरल करने के लिए, आसान करने के लिए ये योजना लाई गई, ताकि जो पूंजी वो जल्द से जल्द उन्हें मिले और वो एक फॉर्मल बैंकिंग और ये जो डिजिटल इकोसिस्टम में जो भारत के वो आ सके। इसी के लिए ये योजना 2020 में लाया गया।
1: कौन कौन से स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना के दायरे में आते हैं और उनकी पहचान एवं पात्रता निर्धारित करने में स्टेट, यूटी और यूएलबीज की क्या भूमिका है?
0: स्ट्रीट वेंडर का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी व्यापक है। इसमें जैसे कि हमें सब्जी और फल जो बेचने वाले होते हैं, जो चाय और नाश्ता बेचने वाले होते हैं, जो वेंडिंग कार्ट जो लगाते हैं, जो रेडी टू ईट फूड या फास्ट फूड जो हम बोलते हैं, छोटे दुकानदार जो कि वेंडिंग कार्ट में आप जो देखते हैं कि खिलौने बेचते हैं या फिर छोटी छोटी सामान जो बेचते हैं, ये सारे वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
1: जी
0: अब इसमें मूल उद्देश्य जो है इन छोटे कारोबारियों को इसमें जोड़ने का, ये है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जैसे इंस्टीट्यूशन बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक इंस्टीट्यूशन से आप अगर जुड़ जाते हैं तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। तो आप बैंक से जुड़ जाते हैं तो आपको कभी भी बाद में अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह इन लोगों को बैंक से जुड़ने का मौका मिला।
1: जी
0: अब आप जो आप आपने सवाल किया कि यूटी
1: यूटी
0: और
1: स्टेट
0: स्टेट
1: यूएलबीज की क्या भूमिका
0: क्या
1: है?
0: भूमिका है इसमें, जो यूनियन टेरिटरीज में, मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो अंडमान यूनियन
1: अंडमान
0: टेरिटरी है वो इसको लागू करने में सबसे सफल यूनियन टेरिटरी है। एक नंबर पे ये यूनियन टेरिटरी है आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सफलतापूर्वक यहाँ पे लागू किया है।
1: जी
0: तो इसके लिए जो हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, जो यूएलबीज़ आपने कहा, जो कि एसबीपीएमसी है यहाँ पे, वो इस जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं जो जिन वेंडर्स की, वो चेक करते हैं और उसके बेसिस पे जो एप्लीकेशन उनके पास जाता है वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। और यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, वो फॉरवर्ड होके बैंक के पास जाती है और बैंक फिर उसको फाइनल लोन के लिए प्रोसेस करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपका यूनियन टेरिटरी, जो अर्बन लोकल बॉडी है, और बैंक, तीनों अगर साथ साथ में काम करें तो ये प्रोसेस बहुत ही आसानी से और
1: आसान हो
0: सरल
1: जाता
0: तरीके
1: है
0: से होती है, जो कि यहाँ हो रही है अभी।
1: जी। क्या इस योजना के तहत मिलने वाला ऋण सीधे बैंक के माध्यम से मिलता है? आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताएं।
0: जी, ये ऋण बैंक के माध्यम से मिलता है, लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पहले तो जो लोकल बॉडी है जो एसबीपीएमसी है उनके पास वेंडिंग का एक लिस्ट रहता है। वो लिस्ट के हिसाब से वो देखते हैं कि कौन वेंडर, उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिलता है वेंडर्स को, जो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं वेंडर्स के पास होती है। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा भी घबराने की कोई बात नहीं है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन करके उन्हें वेंडर्स को दिया जा सकता है एसबीपीएमसी की तरफ से। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके वो बैंक में वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो स्क्रूटिनी है वो लोकल बॉडी ही करेगी, जैसे उनका स्क्रूटिनी का तरीका होता है टू स्क्रूटिनाइज स्ट्रीट वेंडर्स।
1: जी
0: एक बार वो हो जाने से वो फिर जब बैंक में अप्लाई होता है तो बैंक स्क्रूटिनी थोड़ी सी करती है, उसके बाद वो लोन प्रोसेस हो जाता है।
1: वर्तमान में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण की 3 चरणों वाली व्यवस्था क्या है?
0: वर्तमान में अभी 3 चरण की व्यवस्था है, जो कि प्रोग्रेसिव ट्रांचेस बोला जाता है।
1: जी
0: तो पहले जो चरण में है, जो पहला ट्रांच है, वो 15,000 रुपये के लिए होती है। उसमें जो सबसे पहले जब वो एप्लीकेशन के लिए जाते हैं हमारे

0: वेंडर्स, तो वो 15,000 रुपये के लिए अप्लाई कर पाते हैं।
1: जी
0: जब वो ऋण वो अपने सही तरीके से जब हर महीने जो ईएमआई आती है उसको चुकाते हैं, और एक निर्धारित समय होता है 1 साल के अंदर में जो 15,000 रुपये की है उसको अगर वो सही से ऋण चुका देते हैं, तो वो नेक्स्ट जो ट्रांच है, नेक्स्ट जो चरण है, वो जो 25,000 की है,
1: जी
0: उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। और वो भी अगर ऋण वो सही से चुकाते रहते हैं, वो 1.5 साल के लिए होता है, 18 महीने के लिए जो निर्धारित समय है 15,000-25,000 चुकाने का, वो चुकाने के बाद फिर वो 50,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जो थर्ड ट्रांच है, और
1: अच्छा
0: वो फाइनल ट्रांच है, वो आप उसके लिए फिर 36 महीने 3 साल मिलते हैं उसको चुकाने के लिए।
1: क्या ये इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए किसी जमानत या कोलेटरल की आवश्यकता होती है?
0: बिल्कुल नहीं, यही सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण फीचर है इस पीएम स्वनिधि लोन का, कि ये कोलेटरल फ्री है।
1: जी
0: कोलेटरल फ्री हो जाने से दो चीज़ें हैं, एक तो उनको कोई कोलेटरल या अपना कोई कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, दूसरा ये है कि जो ऋण लेने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सहज हो जाती है, उन्हें बस अपने बैंक में जो एप्लीकेशन है वहीं जमा करना होता है और बैंक तुरंत ही उस लोन को प्रोसेस कर देती है और उनके खाते में पैसे चले जाते हैं।
1: हमारे द्वीप समूह के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों तक पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी और लाभ पहुँचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: यहाँ बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं थ्रू आउट, जब जब से ये योजना आई है, इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे किए गए थे, हमारे जो अर्बन लोकल बॉडी है SBPMC के द्वारा,
1: जी
0: उन्होंने जो प्रोग्राम में जो स्ट्रीट वेंडर्स एलिजिबल है उनको बुलाया गया था, फिर हमारे बैंक सारे सारे बैंक्स को बुलाया जाता है, और उसी एक प्लेटफॉर्म में दोनों जो स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं और जो बैंक उन्हें देना चाहती है उन्हें एक प्लेटफॉर्म के अंदर में ला के, बहुत सारे लोन्स ऐसे थे जिनको उनको फाइनल प्रोसेस के लिए फाइनल किया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम लास्ट कुछ महीनों में होता गया है, और हमारे जो डिग्निटरीज भी है जो मीटिंग्स यहाँ पे होते हैं, हर वो ऐसे मीटिंग्स में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तवज्जो दिया जाता है, और इसको
1: लोगों तक
0: हर
1: पहुंचाने
0: हाँ लोगों
1: का
0: तक पहुँचाने के लिए हर
1: संभव
0: संभव
1: कोशिश।
0: जो भी है कोशिश की
1: जी
0: जाती है।
1: जी
0: हर मीटिंग में जहाँ पे भी बैंक्स रहती है या ये लोकल बॉडीज़ रहती हैं उन्हें जितना भी कर सके उन्हें बताया जाता है, और इसका यही परिणाम है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम अभी एक नंबर पे है, सबसे अव्वल नंबर पे है ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज जो कि इस प्लान को लागू कर पाया है।
1: बहुत अच्छी बात है सर। योजना के पुनर्गठन के बाद यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा किन पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकती है और इससे उन्हें क्या लाभ होगा?
0: जी, ये जैसे कि है, जैसे मैंने कहा कि ये 3 चरण में है जो दिया जाता है ऋण, पहला चरण 15,000, दूसरा 25,000 और तीसरा 50,000। तो ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, ये जब आप तीसरे चरण में रहते हैं,
1: जी
0: तीसरे चरण में जब आप उस ऋण को अच्छे तरीके से उसका रिपेमेंट होता है, तब आपको ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड है जो कि 10,000 के लिए होती है, वो रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड है, जिससे कि आप जो अपना व्यापार कर रहे हैं उसको और थोड़े अच्छे तरीके से कर सके, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जैसे क्रेडिट कार्ड हमारे पास होती है
1: जी
0: जब हम यूज़ करते हैं और फिर उसका हम लोग रीपे करते हैं, फिर वो रिवॉल्विंग हो जाता है, उसी हिसाब से वो रुपए क्रेडिट कार्ड आती है। और ये एक डिजिटल, जैसे कि मैंने कहा कि एक डिजिटल इकोसिस्टम में इन वेंडर्स को और इन छोटे व्यापारियों को लाने की एक कोशिश है, और इस 10,000 से वेंडर अगर आगे अच्छे तरीके से उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करे जो कि आपका 30,000 तक भी जा सकता है मैक्सिमम, तो यही अभी ये तीसरे चरण वाले जो वेंडर्स हैं जिन्होंने लिया है
1: जी
0: उनके लिए ये
1: सुविधा
0: सुविधा
1: उपलब्ध
0: दी
1: है।
0: गई है।
1: पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। इस विस्तार के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और इससे नए लाभार्थियों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा?
0: जैसा कि मैंने कहा मैम, ये बहुत ही सक्सेसफुल योजना रहा है अभी तक, और ये 2025 तक की योजना थी पहले,
1: जी
0: लेकिन चूंकि ये इतना सक्सेसफुल रहा है तो इस योजना को और भी 5 साल के लिए मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया, ताकि जितने भी लाभार्थी अभी तक रहे हैं ऐसे और भी लोग जुड़े, ऐसे और स्ट्रीट वेंडर्स जुड़े और ऐसे छोटे जो कारोबारी है वो भी जुड़ते जाए, और इसमें और भी जैसे कि कुछ कुछ फीचर्स ऐड करते गए, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऐसे यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड आपने कहा, तो
1: जी
0: ऐसे और भी फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो ये हमारा जो मैंने कहा कि फॉर्मल बैंकिंग

0: साथ जैसे जैसे ये जुड़ते जा रहे हैं, इन लोगों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 50,000 तक तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब वो बैंकिंग से जुड़े रहते हैं तो वो अपने अपने दम पे, अपने बलबूते पे बैंक से और भी लेना ले सकते हैं, जिससे कि उनकी और भी ग्रोथ में उनको और भी सहायता मिले।
1: सहायता मिले। अगर किसी स्ट्रीट वेंडर्स को आवेदन करने में सहायता चाहिए या आवेदन ऋण से संबंधित कोई समस्या आती है तो वह कहाँ और किससे संपर्क कर सकता है?
0: ऐसे तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऐसे तो उसके लिए भी है जहाँ पे
1: जी
0: वो ऑनलाइन जा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो वो जो अर्बन लोकल बॉडी, जो फिर से बात आ रही है, जो SBPMC है, उनसे जाके एक बार मिले, क्योंकि ये सबसे पहले तो जो स्क्रूटिनी होती है वो वहीं से होती है, और वहाँ पे अगर कहीं पे जैसे कि कोई सर्टिफिकेट में कोई इशू है या वो भी पता चल जाता है, वहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो वो अपने बैंक, जो निकटतम बैंक है या फिर उनका जो बैंक है, वो
1: जी
0: वहाँ जाके सारे मैट जो भी है इसके अंतर्गत सबको क्लियर कर सकते हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब भी हुआ है कुछ भी, वो बैंक या जो ULBs है उनके हिसाब से वो मैटर सॉल्व कर दिया जाता है।
1: योजना में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार के कैशबैक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं?
0: जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कैशबैक इंसेंटिव है वो अराउंड 12,000 रुपये,
1: जी
0: अगर आप वो डिजिटली QR कोड के साथ आप अपने वेंडिंग कार्ट में आप अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो साल में 12,000 रुपये तक आपको कैशबैक इंसेंटिव मिल सकता है। उसके भी अलग अलग चरण है, जैसे कि 50 ट्रांजैक्शन अगर आप करें तो 1 रुपये का कैशबैक हर ट्रांजैक्शन पे, उसके बाद और 50 करें तो 0.5 रुपीज़, और 100 करें 0.25, ऐसा मिला के सारे साल में, पूरे साल में आप 12,000 तक कैशबैक ले सकते हैं। और जब आप होलसेल की बात करें, होलसेल परचेजिंग करते हैं तो 2,000 के ऊपर आपको अगर आप खरीदते हैं तो 400 रुपये की कैशबैक उसमें भी साल भर में मिल सकता है। तो टोटल 1,600 रुपये का कैशबैक आपको मिल सकता है।
1: जी
0: पर इसका फिर भी ये मूल जो उद्देश्य है ये कैशबैक का, ये है कि आप वो डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़े। डिजिटल जैसे ही हो जाता है, कैश जो भी आपका UPI में अमाउंट आता है वो डायरेक्ट बैंक के खाते में जाता है। बैंक भी ये देख सकता है कि कैसे वो अपना जो कारोबार है वो किस सरल तरीके से उसको वो चला रहे हैं
1: चला
0: और
1: रहे
0: जो
1: हैं।
0: सेल्स है कैसे बढ़ रहा है। तो ये एक जो फायदा है डिजिटल ट्रांजैक्शन का, इसी के कारण इसमें कैशबैक इंसेंटिव्स दिए गए हैं।
1: अंत में आप उन स्ट्रीट वेंडर्स से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं?
0: मैं सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स है और जो छोटे कारोबारियों से ये कहना चाहूँगा कि ये योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत बहुत लोगों ने, बहुत स्ट्रीट वेंडर्स ने, मैं अगर बोलूँ भारत के हिसाब से अराउंड 77 लाख, 77 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इससे लाभान्वित हुए हैं। अराउंड 18,500 करोड़ लास्ट जून क्वार्टर तक हमने उसमें डिसबर्समेंट किया है। तो इससे बहुत लोग लाभ उठा चुके हैं और अभी भी लाभ उठा रहे हैं। इस जो स्कीम को है इसको और आगे बढ़ाया गया ताकि और लोग आगे सामने आए, और मैं उनसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इतने सरल और सहज प्रोसेस से लोन मिलना, ये योजना के अंतर्गत ये इसका लाभ उठाए। और जैसे बोलते हैं कि तिनके तिनके से घड़ा भरता है,
1: जी
0: वैसे ही ये योजना ऐसे ही है। आप 15,000 से शुरू करते हैं, फिर 25,000, फिर 50,000, और उसके बाद जब आप इस बैंकिंग से जुड़ जाते हैं तो फिर आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। आप जितना भी आगे बढ़ना चाहे आप उतना आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उनसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस योजना का फायदा।
1: हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए देवलीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारियां मिली, हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
1: श्रोताओं, आज की बातचीत से यह स्पष्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं बल्कि छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष कड़ी में हमने जाना कि पीएम स्वनिधि योजना किस तरह छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है और उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रही है। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। नमस्कार।
2: क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के तहत

अभी आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:02 हुए हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, 7:20 पर आप सुन पाएंगे। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में होगा बातें मुलाकातें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद लेंगे रात 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान।

0: ये तो थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल सुबह के कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल सुबह 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा सफर शीर्षक पर। 7 बजे आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी की देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिम्पसन से ली गई विशेष भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा पर्यटन के रंग में अंडमान निकोबार। साथ ही कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। ये तो थे कल सुबह के कुछ कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। द्वीप समूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा कल से शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के तहत निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और शिक्षा निदेशालय की ओर से हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर जीवंत प्रसारण भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा के शहीद द्वीप दौरे के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। वे कल और 28 सितंबर को शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे स्वच्छता ही सेवा अभियान और विश्व पर्यटन दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दौरे के दौरान उपराज्यपाल शहीद द्वीप के 2 प्रमुख पर्यटक स्थलों भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर सनसेट बीच पर स्वच्छता

अभियानों का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर का निरीक्षण और कचरा पृथक्करण व निपटान की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। वे पुलिस थाना पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जट्टी का दौरा कर वहां स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके बाद वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन सुविधाओं का जायजा लेंगे। उपराज्यपाल पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ स्वच्छता, पर्यटन, स्वच्छता प्रबंधन तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे। द्वीप समूह के सभी 38 क्लस्टर संसाधन केंद्रों के अंकुरण मेंटर्स के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला कल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा के सभागार में शुरू हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंकुरण मेंटर्स की अकादमिक, मेंटरिंग और मैदानी स्तर की क्षमताओं को मजबूत करना है। उद्घाटन सत्र में अंकुरण मेंटर्स ने व्यक्तिगत रूप से जबकि समन्वयकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की निदेशक संगीता चंद ने विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को मजबूत करने में मिशन अंकुरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मिशन को जमीनी स्तर पर प्रभावी स्कूल स्तरीय प्रथाओं में बदलने के लिए क्लस्टर स्तर के मेंटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर दिया। अंडमान विधि कॉलेज के विद्यार्थियों ने जेल एवं सुधार प्रशासन की व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं का अवलोकन के लिए अपने अध्ययन दौरे के तहत जिला जेल पातरपुर का दौरा किया। यह दौरा संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में कुल 5 बैचों में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों को सुधारात्मक प्रशासनिक उपायों द्वारा कैदियों के जीवन में बदलाव, उनके स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं पर जानकारी दी गई। जेल अधिकारियों ने विद्यार्थियों को जेल प्रशासन की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 और प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के तहत निबंध लेखन प्रतियोगिता शुरू किया जाएगा। इसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सफल 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग तक के युवा माई भारत पोर्टल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। कुल 500 शब्दों की निर्धारित सीमा के साथ निबंध 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जमा किए जा सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी, मानव पूंजी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विषय के साथ विकसित भारत चैलेंज ट्रैक के तहत यह प्रतियोगिता विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सौंपा गया है। राज्य स्तर के विजेता अगले वर्ष 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेंगे। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान शाखा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर विषय पर 3 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबडीन के सभागार में रखा गया है। तीनों जिलों के सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय के पीजीटी, जीटीटी और पीटी शिक्षक भाग ले रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर कल शिक्षा निदेशक आदित्य संगोत्रा ने बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए उनके सर्वांगीण विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यशाला 28 सितम्बर तक जारी रहेगी। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में स्थापना नियम आरक्षण वरिष्ठता पदोन्नति डीपीसी और आरटीआई पर आयोजित 5 दिवसीय परिभ्रामी प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। द्वीप प्रशासन के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विंग ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिवालय प्रशिक्षण

तथा प्रबंध संस्थान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के सहयोग से समामेलित लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए आयोजित किया। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण सचिव सतराम सिंह ने सतत क्षमता निर्माण तथा कुशल प्रशासन के महत्व पर बल दिया। एनिटको के सभी पेट्रोलियम और आईएमएफएल इकाइयों में स्टॉक और संपत्तियों के अर्धवार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य 30 सितंबर को किया जाएगा। निर्धारित तिथि के दिन दोपहर 1 बजे से सभी इकाइयां बंद रहेगी। 11वें आयुर्वेद दिवस और स्वच्छता ही सेवा अभियान के सिलसिले में सीएसएल शिप रिपेयर यूनिट ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष विभाग के सहयोग से आयुर्वेद और जनभागीदारी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद कीर्ति ने इस जागरूकता सत्र का संचालन किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों और संतुलित आहार की प्रभावशीलता पर बल दिया। उन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलों में जनभागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने कार्बेंस्को बीच पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जिसमें एथलीटों, कोचों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था। अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र की सफाई की और कचरा एकत्र किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। द्वीप समूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा कल से शहीद द्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के तहत निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और शिक्षा निदेशालय की ओर से हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई और तेज हवाएं चली। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या छींटे पड़ेंगे। मछुआरों के लिए कोई सूचना नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में तेज हवाएं चलेंगी। ये था मौसम का हाल। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। एमवी वंडोर 28 तारीख को सुबह 7 बजे माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 29 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल नवन जाने के लिए एमवी कैमलवे 27 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल नवन से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 2 तारीख को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल 8 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकौरी माकाचुहा और अराफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 11 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। जलयान नालंदा नैनकौरी होते हुए कैमल बे जाने के लिए 29 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए

की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान कली दोपहर 12 बजे रंगा से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए MV जॉलीबॉय कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम लौटेगा। MV बम्बुका के स्थान पर अब MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम आएगा। MV रंगत कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। MV जॉलीबॉय कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। MV बंडूर कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से

कल दिन में 11:30 पर स्वराजद्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी बंडूर कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम पहुंचेगा। एमवी रानी चंगा कल शाम 5 बजे स्वराजद्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 28 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

जन सूचनाएं। इसके अंतर्गत सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ही जन सूचनाएँ समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

बताओ कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म रिश्ते से। गायक कलाकार है उदित नारायण। अब्बास खतका के गीत को संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में रुक जाना आसान होता है, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना ही असली साहस है। याद रखिए, पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता और सूर्य उदय भी अचानक नहीं होता। प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, इसलिए अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज माह का चौथा शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम बातें मुलाकातें। दोस्तों, अनुशासन, लक्ष्य और निरंतर प्रयास, यही वो गुण है जो किसी भी युवा को अपनी पहचान बनाने की

0: सानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका बचपन कैसा था?
1: नमस्ते, मैं जो है अंडमान निकोबार में ही पली बड़ी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग कारमल से और मैं 12th क्लास पास्ड आउट फ्रॉम नेवी चिल्ड्रन स्कूल और मैं बचपन से ही एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी रुझान रहा है और ऐसे ही मैंने अभी MBBS कंप्लीट किया है लास्ट ईयर 2026 में।
0: आप पढ़ाई में कैसी थी बचपन में और उस दौरान आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी?
1: मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी ही थी। मुझे पहले से ही ये आदत थी कि मैं अपने स्पोर्ट्स और पढ़ाई को दोनों को मेंटेन करते हुए चलूं और मुझे 10th में CBSE बोर्ड में 92.6 स्कोर किया था एंड 12th में 95%। तो मुझे साइंस स्ट्रीम में पहले से ही इंटरेस्ट था एंड बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए आई चोज नीट एंड मेडिसिन।
0: तो पढ़ाई में तो आप काफ़ी अच्छी थी ही, और इसके अलावा आपकी और क्या-क्या हॉबीज़ थी?
1: मैं जब 3 ईयर्स की थी तब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था। मुझे डांस करना बचपन से ही बहुत पसंद था। मैंने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी ये सारे डांस फॉर्म सीखे। उसके अलावा मैं चेस खेलती थी। आई वॉज़ अ नेशनल लेवल चेस प्लेयर टिल 2018। आई वॉज़ प्लेइंग फॉर द स्टेट्स एंड नेशनल। उसके बाद फ्रॉम चेस आई शिफ्टेड टू मार्शल आर्ट्स और फिर मैंने कराटे, स्क्वे मार्शल आर्ट और थंगसुडू जैसे मार्शल आर्ट के प्रति मेरी इंटरेस्ट जगी थी।
0: हम आपसे और भी बातें करेंगे, पर इस समय हम आपसे एक सॉन्ग की फरमाइश लेना चाहेंगे।
1: तो मैं कौन हूँ सॉन्ग फ्रॉम सीक्रेट सुपरस्टार।

0: आपका मार्शल आर्ट्स की ओर रुझान कैसे हुआ?
1: जब मैं 5 ईयर्स की थी तब मैंने फ़र्स्ट मार्शल आर्ट कराटे स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपना फ़र्स्ट नेशनल खेला जिसमें मुझे ब्रोंज आया था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं एक्चुअल में इस मार्शल आर्ट में अच्छी हूँ, और मुझे था कि मैं कैसी भी एक गोल्ड मेडल और नेशनल चैम्पियनशिप जीतूँ। तो वैसे ही करते करते मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैंने आगे इंटरनेशनल्स की तैयारी करी और ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई।
0: देखिए, मार्शल आर्ट्स तो बहुत प्रकार के होते हैं। आप कौन-कौन से मार्शल आर्ट्स करती हैं?
1: मैंने 3 मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट डिग्री हासिल करी है। पहला है कराटे, जो कि बेयर हैंड फाइटिंग होती है पंचेस एंड किक्स के साथ। दूसरा है कोरियन कराटे, जो कि कराटे का ही एक फॉर्म है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड थर्ड इज़ क्वे मार्शल आर्ट, जिसमें मैंने 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है। एंड वो जो है एक इंडियन मार्शल आर्ट है, ये कश्मीर का गेम है जिसके फाउंडर हैं नाज़िर अहमद मीर सर, जो कश्मीरी हैं। और ये जो है हमारा इंडियन मार्शल आर्ट है जिसमें एक तलवार और ढाल से हम लड़ाई करते हैं। तलवार को हम तूरा कहते हैं और ढाल को जो है बरगुला कहते हैं। और इसमें 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है लोबा, जो कि फाइटिंग होती है। दूसरा होता है कवान की, जो कि काता इवेंट्स होती हैं जिसमें हम अपनी टेक्निक्स दिखाते हैं। और थर्ड इवेंट है आर्टिस्टिक इवेंट, जिसको हम एरोस के कहते हैं, जिसमें म्यूजिक के साथ हम जो है अपने टेक्निक्स को डिस्प्ले करते हैं।
0: जी, जब आपने मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में कदम रखा, तब आपके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ थीं और आपने उन सभी चुनौतियों को कैसे पार किया?
1: जब मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो फर्स्ट सीख मैंने सीखी है वो है वेट मेंटेनेंस। जब हम खेलते हैं तो हमें एक वेट कैटेगरी के अंदर रहना चाहिए, और उस वेट से हम ऊपर भी नहीं जा सकते ना हम बिलो जा सकते हैं। तो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे थ्रू आउट सीखना था और मेंटेन करना था, जिसके लिए बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल चाहिए होती है। सेकेंड मेजर इशू वी फेस्ड कि जब हम प्रैक्टिस करते थे तब हमारे पास वो ग्राउंड जो मैट्स थी वो बहुत लिमिटेड होती थी, तो हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। और जब हमें नेशनल में जाके खेलना होता था तब हम वो मैट्स में खेलते थे। तो देर वॉज अ डिफरेंस इन इक्विपमेंट्स, बट धीरे धीरे करके हमने प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को हर एनवायरमेंट में सेटल करा। और जब मैंने शुरुआत करी थी तब मुझे 4th ब्रोंज मिला था। मैं 1 साल जो है हारी भी थी अपना
0: जी
1: स्कूल गेम। और उसके बाद मैंने वो एक पेस मेंटेन करना होता है कि किस तरह टेक्निक्स को यूज़ करना है, वो करने के लिए वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 4th ब्रोंज से वो गोल्ड तक का सफ़र कैसे हो। बट जब
0: जी
1: 2016 में मुझे गोल्ड मिला, सो आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि कैसे खेलना है। एंड तब से 2016 से आज तक आई हैव नेवर गॉन डाउन, मैंने गोल्ड ही जीता है अभी तक।
0: जी तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अभी आपने अनुशासन के बारे में बात की, यकीनन ही आपने कड़ी मेहनत की और अनुशासित अभ्यास किए, और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास कितना ज़रूरी होता है।
1: मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि अगर आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं जियोगे, और अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को अपने डेली लाइफस्टाइल से रिप्लेस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमारा एक फिक्स ट्रेनिंग टाइम होता था जिसमें
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते थे, और वो आज तक हम फॉलो करते हैं कि हमें वही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चाहे वो ऑन द मैच हो, ऑफ फील्ड हो, चाहे हम अपने लाइफ में भी हमें कुछ डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, जैसे कि हम कभी भी खुद से जाके अटैक नहीं करेंगे। इवन इन रियल लाइफ हमें अपने आप को कैसे एक एग्रेशन के साथ नहीं रखना है, कैसे काम रहना है, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे मार्शल आर्ट ने सिखाया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मार्शल आर्ट में मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप परफॉर्म करते हो। और एक लेसन है जो मैंने अपने, अभी 17 ईयर्स हो गए मुझे खेलते हुए, और ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मैं हमेशा गेम से पहले खेलती हूँ, वो है कि परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर नेवर लॉस्ट एंड प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन। एंड दैट्स द ओनली मंत्रा जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ।
0: मतलब सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है,
1: हाँ जी
0: तो इस क्षेत्र में

0: जब आपने कई जगहों पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था तो उस यात्रा का अनुभव कैसा था और आपने मार्शल आर्ट्स और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाया?
1: जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल 2017 में खेला था, जो कि थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, और उसके बाद मैंने दो लगातार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते, जो कि 2018 में कोरिया में और 2024 में उज़्बेकिस्तान. तो ऑल द थ्री मैचेस में, तीन जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें मुझे गोल्ड आया था. बट उसके बाद मैंने अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला था, वो था इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट, जिसमें हर प्रकार के मार्शल आर्ट्स के बच्चे आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से. और कई सारे मार्शल आर्ट, जैसे कि हमारा कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, रेसलिंग हो गई, तो ये सारे लोग जो है अपना मार्शल आर्ट डिस्प्ले करते हैं. एंड उसमें जब मुझे ब्रॉन्ज प्राइज़ मिला, तो दैट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट, जो मेरा लास्ट ईयर 2025 नवंबर में कोरिया में हुआ. एंड ये सारे मार्शल आर्ट में मुझे हर एक टूर्नामेंट में कुछ नया सीखने को मिला, वेदर इट्स ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड. हर टूर्नामेंट में एक लेसन था कि किस तरह अपने आप को बेटर बनाना है. एंड माई सोल पर्पज़ सिर्फ मेडल लेना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं परफॉर्म करूँ तो इट शुड लुक लाइक आई हैव परफॉर्म्ड एंड वाई एम आई अ वर्ल्ड चैम्पियन.
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो एनवायरनमेंट होता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो इस यात्रा में आपके परिवार और दोस्तों का साथ कैसा रहा?
1: बचपन से ही मेरी मम्मा बहुत ही सपोर्टिव रही हैं. उन्होंने ही मुझे हमेशा बोला है कि आप जो भी कर रहे हो, अगर आप उसको पूरे मन से करोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, तो आप ज़रूर जीतोगे. शी वॉज़ द वन जो मेरे हर टूर्नामेंट में मेरे साथ आती है एंड हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. इवन माई डैड, भले ही वो फिजिकली मेरे साथ नहीं आ पाते हैं, बट हमेशा मम्मा और मैं जाते हैं तो वो घर को देखते हैं. और हम कभी भी ये नहीं कहते कि यू कांट डू इट, डोंट गो दिस टाइम, बट हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है. तो मॉम और डैड का हमेशा से यही रहा है कि वी विल सपोर्ट यू टिल द एंड, बट तुम्हें ही मेहनत करनी है एंड दिस इज़ योर फील्ड टू शाइन.
0: तो इस मोमेंट पे हम आपसे एक गाने की फरमाइश लेना चाहेंगे।
1: द सॉन्ग वुड बी दंगल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दंगल.

0: तो सानिया जी, जब आपको ये पता लगा कि आपको भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, और जब वह पल आया तो उस पल की अनुभूति कैसी थी?
1: मुझे नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इट वाज़ इन 2017, और तब मैंने अपना एशियन चैम्पियनशिप खेल लिया था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी चल रही थी. तो मुझे यही था कि ये एक बिगनिंग है, एक बूस्ट है, ताकि मैं आगे और अच्छा परफॉर्म कर सकूं. एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, बट आई स्टिल कांट, मैं ये नहीं बता सकती कि उस वक्त कैसे फील हो रहा था इन वर्ड्स, बट डेफिनेटली इट इज़ अ फीलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. एंड वो मूवमेंट हमेशा मेरे लिए काफ़ी क्लोज टू माई हार्ट रहेगा. इट वॉज़ अ शॉर्ट वॉक बट अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड इट.
0: तो उस समय तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस होगा, एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू।
1: थैंक यू.
0: इस सफलता और भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कृत होने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए?
1: आफ्टर गेटिंग द नेशनल चाइल्ड अवार्ड, मुझे लगता है कि मुझे एक बूस्ट मिला था कि मुझे आगे अब और अच्छा करना है. इससे आगे मेरी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए कि जब भी मैं परफॉर्म करूं मैं अपने टाइटल को भी जस्टिफाई कर सकूं. और उसके बाद मैंने दो लगातार वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेले. मैंने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता. मैंने वर्ल्ड स्वॉर्ड फाइटिंग में भी रशिया में मेडल्स जीते. तो उसके बाद मुझे लगता है कि आफ्टर विनिंग नेशनल चाइल्ड अवार्ड मेरे अंदर और एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो है एक एंड नहीं होनी चाहिए बट एक स्टार्ट होनी चाहिए टू अनदर ब्यूटिफुल जर्नी. एंड दैट इज़ हाउ मैंने उस अवार्ड के साथ अपनी लाइफ आगे देखी.
0: तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मेडिकल चूज़ किया बिकॉज़ आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, तो मेडिकल क्षेत्र के अलावा आपके भविष्य को लेकर और क्या-क्या सपने हैं, और जीवन में आप और क्या-क्या करना चाहती हैं?
1: अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ इन एनएम्स, जीबी पंत हॉस्पिटल. तो मैं अभी जब भी क्लिनिक जाती हूँ आई फील कि आई हैव चोजन अ राइट प्रोफेशन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में ना केवल ये एक नोबल प्रोफेशन है बट आई लाइक वर्किंग इन द मेडिसिन फील्ड. तो मैं आगे अपनी MD करना चाहती हूँ. और इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा गेम्स एशियन गेम्स में या आगे चल के जो भी बड़े कॉम्पिटिशन्स आए उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ. और मैंने अभी आर्चरी भी स्टार्ट करी है जिसमें मैंने दो स्टेट चैम्पियनशिप्स जीते हैं और एक नेशनल पार्टिसिपेट किया है. तो मैं चाहती हूँ कि आगे चल के मैं आर्चरी में भी अपना नाम मेडलिस्ट में लेकर आ सकूँ.
0: तो आप यकीनन ही एक ऑल

0: फाउंडर है, तो अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि देर इज़ नो शॉर्टकट टुवर्ड्स योर सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड.
0: जी
1: और आजकल हम अपने ऐसे लाइफ में जीते हैं जहाँ हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी लोग के लाइफ से. हम उनके ड्रीम्स देख के हमें लगता है कि यही लाइफ अच्छी है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि ड्रीम वॉट यू वॉन्ट टू बी. आपके सपने अपने होते हैं और जो भी आपको करना है उसके लिए कभी भी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग. जब मैंने ड्रॉप लिया तो मुझे भी बोला गया था कि यू आर टू लेट, बट जस्ट बिकॉज यू हैव फेल्ड डजेंट मीन दैट यू आर अ फेलियर. जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड लेट डजेंट मीन यू आर फेलियर. सो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हार्डवर्क करते रहना चाहिए और इट इज़ नेवर टू लेट टू फॉलो योर पैशन. एंड या वही जो मैं अपने बाउट में जाने से पहले खुद को बोलती हूँ, मैं आज ये सबको बोलना चाहती हूँ कि परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट एंड प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन. दैट्स इट. थैंक यू.
0: तान्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं को अपनी जर्नी के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच.
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेडिकल इंटर्न सुश्री सानिया सुभाष से ली गई ये भेंट वार्ता, और इसके भेंट करता थे दीपक कुमार सिंह. दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत.

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

0: तो देर किस बात की। अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं उदित नारायण और स्नेहा पंत के गाए फिल्म एक और एक 11 के एक गीत के साथ। समीर के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है शंकर एहसान लॉ ने।

लीजिए, अब सुनिए शंकर एहसान लौ के संगीत निर्देशन में तैयार जावेद अख्तर की गीत रचना। गायक कलाकार है सोनू निगम और सुनिधि चौहान। फिल्म है अरमान।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर

2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म खाकी का ये गीत, जिसे गाया है अर्णव चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राम संपत।

0: लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में
1: वैसे
0: समीर
1: मुझे
0: की
1: अमीरों
0: गीत
1: से मिलने का
0: रचना।
1: कोई खास शौक नहीं
0: संगीत
1: है।
0: नदीम
1: आपने
0: श्रवण
1: मुझसे
0: का है
1: प्यार क्यों
0: तथा
1: किया?
0: फिल्म का
1: हाँ,
0: नाम है
1: एक तो
0: कयामत।
1: दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डिपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफरदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप सम्वेत स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई।

0: है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना, और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
6: PM नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
4: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने

0: के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही।

0: जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth-level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी, पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक

0: रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2 से 3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहा है।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वॉज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन by our colleagues, but actual manufacturing capability is being developed now by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, ये जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज्ड बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडी

0: लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50%, हाँ ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमोसफियर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो। मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, so it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इफ यू लुक एट इट, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है, फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है। बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, Not to be scared of failures. दूसरी चीज है कि हार्ड वर्क के सिवा कुछ नहीं होता है। अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्ड वर्क करना चाहिए।
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकेंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है उसको नैनो सेकेंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस सेंट्रल, एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है, कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे, अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन

0: कॉस हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
1: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
2: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान, लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
3: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
4: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल साहनी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
3: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
4: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने

0: पे जीवन के विकास, बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और इन्वायरमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट इन्वायरमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
1: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
2: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानियों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के वैज्ञानिक भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉडराइज पोलिना समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
2: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए

0: आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
1: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी, और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया, और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा। और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
2: जी,
1: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सूं की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूंसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में, तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी, और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए, जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई, और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2,220 डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु, या वैसे कोई भी प्लास्टिक, या कोई भी कपड़ा, या कोई भी सामान न ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी। कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
3: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
0: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
3: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में 1 सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का

0: संकल्प लिया गया।
1: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन। उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुचि श्री आर तायमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नादद्वीप रत्नाकर, लय तिलकम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंधनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं तिरुचि डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। लीजिए सुनिए मिश्र जाति त्रिपुट तालम।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विच फीचर्स लय विन्यासम। फर्स्ट अमृदांगम रिसाइटल बाय विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन, फॉलोड बाय अ डोलू रिसाइटल बाय विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया। टू बिगिन विद, लिसन टू मृदंगम रेंडिशन ऑफ विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। Salem K. Srinivasan hails from a traditional family of musicians. His father, Shri Jata Krishnaya Bhagavatar, was a vocalist of the traditional Bhajan Sampradaya. He received initial training in music from his grandfather, Shri G.K. Ramaswamy Bhagavatar.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर दुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक फीचरिंग लय विन्यासम यू जस्ट हर्ड मृदंगम रिसाइटल बाय सेलम श्री के श्रीनिवासन। ही वॉज अकम्पनीड बाय तेनकासी श्री एच परमशिवम ऑन द कंजीरा, अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन ऑन द घटम। Violin refrain was by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.

0: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक लेट अस नाउ लिसन टू द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया।
0: श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया आकाशवाणी हैदराबाद के ए ग्रेड तविल कलाकार हैं। उनकी संगीत यात्रा का प्रारंभ वर्ष 1990 में उनके प्रथम गुरु श्री वी एन लक्ष्मी नारायण के मार्गदर्शन में हुआ। बाद में उन्होंने श्री यल्लूरु श्री निवासुलु तथा श्री तिरुकडेयूर टीजी बाबू से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त किया। वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
1: श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। His musical journey began in the year 1990 under the guidance of his first guru, Sri V. N. Lakshmi Narayanan. Later, he received training and guidance from Sri Yellur Srinivasulu and Sri Tirukkadayur T.G. Babu. In the year 2018, he was honored with the Eminent Citizen Award of Telangana State. And in 2019, he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently, he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami Temple in Yadadri. He has had the privilege of providing Tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication, and profound experience, Sri V. Chinna Venkata Subbaiya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying on Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
0: Aaiye ab sunte hain Sri V. Chinna Venkata Subbaiya dwara Tavil Lay Vinyasam, jo Chaturashtra Jati Triput Tal mein nibadh hai.
1: Let us now listen to the Tavil Lay Vinyasam by Sri V. Chinna Venkata Subbaiya, set to Chaturashtra Jati Triputa Talam.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चेन्ना वेंकट सुब्बैया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडुगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the Tavil Lai Vinyasam by Sri V. Chennavenkata Subbaiya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashwani.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई या तेज तेज हवाएं चली। जन सेवाओं को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी या छींटे पड़ेंगी। मछुआरों के लिए कोई सूचना नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 11:40 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ। आइए सुनते हैं अनमोल विचार।
1: पर्यटन केवल नई जगहों को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमें नई संस्कृतियों, परंपराओं, लोगों और जीवन शैलियों को समझने का अवसर देता है। यात्रा हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमारी सोच को व्यापक बनाती है। जब हम किसी नए स्थान की यात्रा करें तो उसकी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और विरासत का भी सम्मान करें। यात्रा हमें सिर्फ नई जगहों तक नहीं ले जाती, बल्कि हमें दुनिया को एक नई नजर से देखना सिखाती है। आइए पर्यटन को आनंद के साथ साथ जिम्मेदारी और सम्मान की यात्रा भी बनाएं।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृवंदना संवेद स्वरों में।